FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज रविवार है, शक संपद 1948 के आश्विन मास की पांचवी तिथि। तदनुसार 27 सितंबर 2026 प्रातः की 5:57 होने को है। अब से कुछ ही देर में आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की

0: ट्वेंटी श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, एनसी सूजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए चिंतन, विषय है प्रसन्नता।

0: प्रसन्नता आत्मा का गुण है। इसे शब्दों में वर्णित करना कठिन है, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। मनुष्य प्रसन्नता बाहर खोजने का प्रयास करता है, जबकि ये हमारे अंदर ही छिपी होती है। बस आवश्यकता होती है उसे मुस्कुराहट के रूप में बाहर लाने की। अच्छा जीवन जीने के लिए प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग धन, कुछ पद और कुछ प्रतिष्ठा से प्रसन्नता को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में तो प्रसन्नता हमारी मन की स्थिति पर निर्भर करती है, और यदि ये प्रसन्नता हमारे स्वभाव में है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सरल हो जाता है। प्रसन्नता मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य देती है, जबकि दुख और विषाद उसे रोगी बना देते हैं। ये सच है कि मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना होता है। संघर्षरत व्यक्ति निराशा और चिंताओं से ग्रसित हो जाता है। उसे जीवन में चारों ओर अंधकार भी दिखाई देने लगता है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति अपने सार्थक प्रयास करता रहे तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त होती है। ये सफलता उसे प्रसन्न कर देती है। सफलता का मूल मंत्र है प्रसन्न चित्त होकर कर्मरत रहना। कर्मरत व्यक्ति व्यस्त होता है और व्यस्त व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे दुख या विषाद का समय ही नहीं मिलता। प्रसन्न मन से कार्य करने वाले मनुष्य अपने कार्य को बहुत ही सुंदर और नवीन रूप से करते हैं। वे हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। उनका जीवन सदैव हंसी खुशी से भरा रहता है। प्रसन्नता जीवन में सकारात्मकता लाती है। सकारात्मकता की भावना संपूर्ण वातावरण को खुशहाल बना देती है। इसीलिए हमारी वर्तमान स्थिति को समझते हुए हमें प्रसन्नता से कार्यों को संपन्न करना होगा। जिस कार्य को करने में हमें खुशी मिलती है, उन अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाना होगा। समस्याएं, दुख, कठिनाइयां हर मनुष्य के जीवन में आती हैं, लेकिन इसका समाधान ढूंढना भी हमारे ही हाथ में होता है। पुराने बीते वक्त को, किसी दुर्घटना को अलविदा कहना अपनी पूरी ऊर्जा से कार्य को संपन्न करने का प्रयास प्रसन्नता को आमंत्रित करता है। तो आइए प्रत्येक स्थिति में हम ये निश्चय करें कि हम प्रसन्न रहेंगे और परिवार में और समाज में हर्ष और उल्लास का वातावरण बनाकर सभी को प्रसन्नता से परिचित कराएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। अब प्रस्तुत है वंदना।

वंदना सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से। लीजिए अब सुनिए सीमा मिश्रा की आवाज में ये भक्ति रचना।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया। एपिसोड नंबर 201 201।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्या रत हूं। मुझे श्री राम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

अभी हमारी श्रोता सुन रही थी रामचरितमानस कांत का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिनभर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

प्रातः 8:15 पर समय होगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से का। 8:45 पर आप आनंद ले सकते हैं राजस्थानी लोक संगीत का।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:10 पर और सुबह 9:10 पर।

द्वितीय प्रसारण सभा में फिल्म द्वितीय प्रसारण सभा में आप सुनेंगे शाम 5:05 पर आपका अपना कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किसान भाई और बहनों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।

खेती निवाद कार्यक्रम हमारे सब किसान भाई इन बोने धर्मिष्ठानु राम राम राम राम। देखो भाई इन बुने सब खेती बाड़ी नु काम काज करवाम लगे था कहा केम के अपने जेब भी खरीब नी फसल नी बुवाई करवी इन हार हमार करवानो समय सारी रो तक है ने अवे तो देखो मेघ बाबा नी वाट जोई रे तक कहा केम के अपने जेब भी फसल आटले उदी तो अच्छी है ने अपने थोड़े समस्या है पानी नी पानी बाबा आवे जाए तो अपन मन में एम थी जाए हाँ भाई खुशी हर भरू एवं अपन मन भी हर भरू थी जाए पर मन दुखी नहीं करे कि देखो ये ऊपर वाला ना हाथ में जय विधि भी आवेगा तो आ जाएगा पर आपने काम तो करतव रहू जरूरी है कि अपने देखो खतपतवार वगैरह भी खूब थी रीते की है सारो उगी गयो है दूधिया अवस्था है इन अनुसार अपने आ खातर वगैरह ना भी नाखवा जरूरत है एक तरह थे कि आ बेरुतिन मौसम भी थी गयो है तो कोई कीट वगैरह लगवाना नहीं संभावना भी थी सके नहीं थी रहते कहीं तो अपने हर समय मैं कार्यक्रम ने माध्यम थी कहो के जो भी काम है ध्यान थी सावधान थी करव जरूरी है कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करे मन दुखी नहीं करे। देखो खेतीबाड़ी है खेतीबाड़ी में कई कोई मल भी सही कम भी मल वधारे भी मल पर इन हाथे हाथे अपने हर तरह नु ध्यान रखव जरूरी है क्योंकि अपने आ शाक सब्जी वालू काम भी भाई इन बहने खूब करी हुई है नवा कोई रोप लगाड़ी रो कोई बीज थी तैयार करी रू है ने कई तरह थे की फल सब्जी वगैरह उगाड़ी रही फूलों की खेती करी रही तो इन थे की जी नकदी फसल है एक तरह थे की आमदनी थी रही थी ती भी भाई करी रहता कहीं क्योंकि साग सब्जी वालू काम है ये 12 महीने 32 घड़ी साल वालू है तो इन भी भाई बहने खूब मेहनत करी रही आजकल इस साल रू है कि ना भाई साग भाजी वालू काम कर दे तो अपने जी अनाज नी फसल करे 3 महीने 4 महीने की वाट जुवी पड़े तो भी नहीं जुवी पड़े अपने रोज जो काम है इन तो ही निकली जाए इन्हें हाथ अपने पशुधन भी राखी रहता कहें तो बे एक बीजा थकी जुड़ा पहलू है तो अपने हर तरह नु ध्यान राखी ने मन में खुशी राखी ने जो अपन मन रखूंगा वो अपने काम काज थाएगा एट्ले देखो खेती बाड़ी है तो अपने हर तरह की समस्या भी आई सके फायदा भी थे नुकसान भी है एने तभी अपने फायदा थे तो अपने खुश थो पर नुकसान था तभी अपने दुखी भी नहीं थव ने जी पानी की सुविधा हो तो भाई पानी वगैरह पाई दी क्योंकि आजकल नहर वगैरह में तो कितनी है कुआ वगैरह तो कि भी पावा काम है तो इन्हें आवश्यकता अनुसार पाई दी तो अपने जीव अपने मेहनत ने अनुसार थोड़ा पाकी ने मलबो है तो मली जाएगा बीजू तो अपने ऊपर वाला ने हाथ में से अपने हाथ में है नहीं कि मैं एक बार जा रहे इन मर्जी था इंदाड़े पड़ेगा पर अपने काम करते रहू है कोई तरह न काम में समस्या नहीं आवे ने टेम टेम में ताना कार्यक्रम ने माध्यम थे कि अपने हमेशा कहो कि जो भी काम है अपने हर बात नु ध्यान रखो थे कि काम काज करव है अपने भी खास कर ध्यान रखू क्योंकि बे ऋतु मौसम थी रू तो तो आना टाइम में तो सर्दी जुकाम बुखार वगैरह खूब साली रहता कहीं क्योंकि खावा पीवा भी अपने साफ सफाई नु विषय ध्यान रखू है अपने घर में अबोलो जी पशुधन वगैरह है तो इन भी ध्यान रखव जरूरी है क्योंकि ई बीमार थी जाएगा तो आप घर की जो आजीविका आमदनी है ई भी नुकसान थी सके एट्ले टेम टेम में आप आना कार्यक्रम माध्यम थी कहीस के हुए कि जो भी काम है अपने ध्यान थकी सावधानी थकी करव कोई भी काम जल्दबाजी नहीं करव चाहे खेतीबाड़ी नु हो चाहे घर नु हो चाहे कोई भी तरह नु है क्योंकि अपने खेतीबाड़ी में आशीर्द कोई नानो मोटो उद्योग धंधा करी देता कहें ने भी अपने कोई तरह की समस्या आई जाए कोई बीमार थी जाए तो भी दिक्कत आ जाए एट्ले बात नु ध्यान राखी अपने काम काज करव है खातर वगैरह नहीं आवश्यकता खातर वगैरह नाखी दें दवाइयों भी उपयोग कर बीजी आवश्यकता।

0: अग्नि क्लिप वगैरह लागी रहता कहीं, तो इनू भी ध्यान रखे। कोई रोप वगैरह पौधा वगैरह लगाड़ी रहा, तो जो रोप वगैरह कोई खराब हो तो इन्हें नहीं लगाड़ी। कोई भी करण अपने ने ध्यान रखू है, नहीं नहाते कोई फल सब्जी वगैरह आप लगा दे, किन कोई फल सब्जी खराब सही रहते की है ती भी तोड़ी ने अलग कर दे। क्योंकि एक फल सब्जी पौधो भी कोई भी खराब होगा तो आप पूरी फसल माते भी नुकसान थी सके। इतने इन सब बातों नु ध्यान रखू है, काम काज तो हमेशा करवो, ने काम काज ने हाथे हर बात नु ध्यान रखू जरूरी है। एटले आप कार्यक्रम में हवा हवा नानी बात करवा, एटले आपने हर तरह की ध्यान राखी काम काज करूंगा तो बढ़िया रहेगा। ने भाई एम बहन देखो बातें तो घनी करवानी इच्छा हती, पर टाइम नु मान रख पड़े। आज तो आपड़े सुटा पड़ा ने अगला कार्यक्रम में फेर मलंगा। राम राम, राम राम।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शंभू सेन व साथी कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: स्लो पिजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूर्वा वोरा से वार्ता। वार्ता का विषय है साइबर अपराध और हमारी सुरक्षा।
1: आज इंटरनेट के द्वारा अनगिनत कार्य किए जाते हैं, जैसे ऑफिस के कार्य, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, रेलवे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और भी अन्य उपयोग किए जाते हैं। ऐसे में इंटरनेट का उपयोग कुछ लोग गलत और अवैध कार्यों के लिए करते हैं। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर नेटवर्क को बेकार ट्रैफिक और मैसेज से भर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ व्यक्ति, किसी संगठन या सरकार को नुकसान पहुंचाना होता है। साइबर अपराध के कई उदाहरण हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग इसे पैसे कमाने का एक आसान तरीका मानते हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, आंकड़ों के मुताबिक उनकी आयु तकरीबन 18 से 30 साल तक की है। अब हम जानते हैं साइबर अपराध के प्रकार के बारे में। साइबर अपराध में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, सिस्टम को नष्ट करने के लिए वायरस जैसे मेलवेयर बनाना या भेजना, या फिर पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना आदि शामिल है। इनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। पहला, बात करेंगे हम हैकिंग के बारे में। इसमें किसी के कंप्यूटर के डेटा को बिना अनुमति के गैर कानूनी ढंग से उपयोग किया जाता है। हैकर्स घुसपैठ से किसी के कंप्यूटर सिस्टम की हानि पहुंचाते हैं। यह एक बड़ा अपराध है। अब इसके बारे में हम इसके बाद दूसरी है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के अंदर अपराधी किसी व्यक्ति की जानकारी उसके बारे में गैर कानूनी ढंग से निकाल लेते हैं और उसे मैसेज या कॉल करके परेशान करते हैं। इसमें अपराधी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना। तीसरा है पहचान की चोरी। आए दिन इंटरनेट पर कई लोगों के डेटा चोरी हो जाते हैं और कुछ लोगों की बैंक संबंधित जानकारी चोरी हो जाती है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। ऐसे नुकसान से कई बार ये भी सामने आया है व देखने में आया है कि लोगों का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है या उनकी पूरी जमा पूंजी चोरी में चली जाती है। चौथा है वित्तीय अपराध। हैकिंग करके अपराधी लोगों के पैसे चुराते हैं। इस प्रकार वे कंपनियों का डेटा भी चुराते हैं और ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजों को वो आसानी से अपने तक समेट के रखने की उसमें वो ऐसी सभी चीजों को पूरे सभी सार्वजनिक कर देते हैं और यह वित्तीय अपराध के अंतर्गत आता है। अगला, वायरस द्वारा लोगों की जानकारी पर हमला। साइबर अपराध में वायरस अटैक सबसे बड़ी समस्या है। यह एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में मौजूद सारी जानकारी को नष्ट कर देता है। इसमें किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को दूसरे के सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में उसकी सभी प्रकार की जानकारी जो उसके कंप्यूटर में मौजूद है वो सभी वो हैकर्स आसानी से अपने पास ले सकता है। अगला है फिशिंग। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति की जरूरी जानकारी निकाल ली जाती है। इसमें झूठे वेबसाइट या ईमेल भेजकर व्यक्ति की जानकारी चुरा ली जाती है। ऐसे में लोगों को अनजान स्पैम मेल में किसी लिंक को क्लिक करने से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा मेल आए जो आपको कहीं से भी संदिग्ध लग रहा हो, तो ऐसे

मेल को या ऐसे मैसेज का आप किसी भी तरीके से वापस उनका बदले में कोई जवाब न दें या उन्हें क्लिक करके खोलने की गलती न करें। अगला हम बात करते हैं पायरेसी। पायरेसी में अपराधी डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, जिसके कारण भी काफी नुकसान होता है और उसकी वजह से वो उसी के डुप्लीकेट फोटो या उससे वो पूरे डेटा को आसानी से अपने पास में ले लेता है, जो कि एक गलत चीज है। इसके बाद में सिस्टम पर अटैक, साइबर अपराध कंप्यूटर के सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, जिसे मालवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब ये तो हुई बात इसके प्रकार की, अब हम बात करते हैं इस अपराध से बचाव के उपाय। कंप्यूटर हैकर्स से कंप्यूटर को बचाने के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपनी वित्तीय या बैंक संबंधी डिटेल किसी से साझा नहीं करना चाहिए और शॉपिंग संबंधित कार्य सुरक्षित वेबसाइटों से ही करनी चाहिए। यूजर्स को एक अच्छा पासवर्ड चयन करना चाहिए, जिससे हैकर्स किसी की मेल आईडी हैक न कर पाए। अभिभावकों को अपने बच्चों को सीमित मात्रा में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करने देना चाहिए। आजकल देखने में आया है कि बच्चों का मोबाइल पर इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, वो आए दिन कुछ न कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। यह ही एक फ्रॉड का माध्यम बन चुका है। आसानी से किसी को भी इस तरीके से जाल में फंसा लेते हैं हैकर्स अपने, और फिर उसके बाद में वो उनकी पूरी जमा पूंजी को कुछ ही चंद सेकंड के अंदर वो पूरी बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइटों के पासवर्ड व सेटिंग्स को सही से रखना चाहिए और अपनी निजी जानकारियों को शेयर करने से बचना चाहिए। वित्तीय लेनदेन में सार्वजनिक बैंक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे निजी जानकारी चोरी होने का भय रहता है। और किसी भी अज्ञात लिंक को खोलने से बचना चाहिए। कभी आपने ये चीज अगर गौर करी हो कि आजकल ये आम हो चुका है, कहीं पर भी आप शॉपिंग मॉल में या किसी बड़े स्टोर पर, वहां पर आपको वाईफाई फ्री में प्रदान किया जाता है। इस वाईफाई को यूज में लेते हुए भी, इसका इस्तेमाल करते हुए भी आप बहुत सावधान नहीं बढ़ते। कोई अन्य अगर आपको शो कर रहा हो या आपको अपने मोबाइल में दिखाई दे, तो उसका इस्तेमाल न करें, उस पर क्लिक न करें। साइबर अपराध से केवल व्यक्ति नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत भयंकर खतरा है। यह व्यक्ति, संस्थान, यहाँ तक कि सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें न केवल व्यक्तिगत जानकारी बल्कि राष्ट्रीय जानकारियां भी चोरी हो जाती है। अतः साइबर अपराध को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है, ताकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी सतर्कता के साथ करें। हमेशा सोशल मीडिया इत्यादि के पासवर्ड और सेटिंग को सही रखें व हमेशा सतर्क रहें। हमेशा यह ध्यान में रखें कि संदेश कहां से आया है, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करें। इंटरनेट का उपयोग सिर्फ ज्ञान विकसित करने के लिए करना चाहिए, ना कि गलत चीजों के लिए। साइबर सुरक्षा सिस्टम नेटवर्क प्रोग्राम डिवाइस और डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करने और सिस्टम नेटवर्क व प्रौद्योगिकियों के अनाधिकृत शोषण से रक्षा करना है। अब हम बात करेंगे इससे बचने के कुछ तरीकों की। जैसे आप अपने मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, हर खाते के लिए अलग पासवर्ड व उपयोगकर्ता नाम संयोजन बनाएं, कमजोर पासवर्ड न बनाएं। दूसरा है, सोशल मीडिया को निजी रखें। आपके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर ऑनलाइन पोस्ट करते वक्त सावधानी बरतें। तीसरा है, अपने संग्रहण डेटा को सुरक्षित रखें। अगला है, ऑनलाइन अपनी पहचान की सुरक्षा करना। किसी की भी व्यक्तिगत आईडी देते हुए पहले उसकी पहचान सुनिश्चित कर लें। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करते समय आपकी गोपनीयता सेटिंग्स को अनुमति देना भी शामिल है।
अगली सावधानी रखें, अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें ताकि हैकर्स का आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, और अपने फोन को सुरक्षित रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही एप्लीकेशन

0: डाउनलोड करें, अज्ञात स्रोतों से डाउनलोड न करें। वह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अद्यतन रखें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कभी न भूलें। कभी कभी हैकर्स आपके जीपीएस के जरिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपकी हर गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। जब भी कभी दुर्भाग्यवश कहीं फंस जाएं, तो मदद के लिए सही व्यक्ति को चुनें, मतलब स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट जरूर दें, वह आपकी जरूर मदद करेगी। साइबर अपराध पर सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। अपनी कंप्यूटर को सुरक्षा सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखें। सुरक्षा सॉफ्टवेयर।
1: इसी के साथ कार्यक्रम वातायनव यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

अभी आपने सुना फिल्म वक्त का गाना, युगल स्वर थे आशा भोसले महेंद्र कपूर के, गीतकार थे साहिर लुधियानवी, धुन बनाई रवि ने। आइए हम है राही प्यार के कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म मोहब्बत जिंदगी है का गाना, जिसे युगल सरों में गाया महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। गीत के बोल एसएच बिहारी के, धुन ओपी नैयर की। श्रोताओं, आज हम महान पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को याद कर रहे हैं। महेंद्र कपूर सिर्फ एक आवाज नहीं, हिंदी फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम दौर की पहचान थे जिसमें सुर में मिठास भी थी, जिनके सुर में मिठास भी थी और आवाज में बुलंदी भी थी। आइए सुनते हैं ये अगला गाना।

अभी आपने सुना घूंघट फिल्म का गाना, सुरों से सजाया आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, बोल शकील बदायूनी के और संगीत रवि का। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: अभी आपने सुना फिल्म गुमराह का गीत, युगल स्वर थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर के, शब्दकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत में पिरोया रवि ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800

0: 800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम मेरा ही प्यार के। आइए सुनते हैं अगला गाना।
2: कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
3: अरे जा जा
4: जा जा जा रे।

जाती है नशीली शाम के पर्दे में सुबह मुस्कुराती है। वो शोला हो के चिंगारी मचल कर नाचे जाती है तो धड़कते

करते किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे जा, जा।

अभी आपने सुना सेहरा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रामलाल का। इसी के साथ ही हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी को मेरा नमस्कार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट।

0: खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित और भारत वेस्टइंडीज के बीच तीन मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: A persistent threat to peace.
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: In particular, should be exposed and should be countered.
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉ जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
4: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेयन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की चार श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी

0: उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उत्तराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
4: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
6: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद

0: बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से, और मैं हूं आपकी दोस्त रेडियो होस्ट हीना जैन। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। दोस्तों, कभी कभी घूमने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती। कभी अपने ही शहर की किसी अनजानी गली में, किसी पुराने मंदिर की घंटी में, किसी नदी किनारे बैठकर किसी पहाड़ की चोटी से दिखाई देते नजारे में हमें पूरी दुनिया मिल जाती है। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं राजस्थान के उस खूबसूरत हिस्से में, जहां पानी है, पहाड़ है, जंगल है, इतिहास है, आस्था है, संस्कृति है, और सबसे बढ़कर अपनापन है। जी हां, आज बात होगी हमारे अपने बांसवाड़ा की। माही नदी की लहरों से सजा सिटी ऑफ हंड्रेड आइलैंड, वागड़ की संस्कृति की खुशबू लिए यह शहर प्रकृति और परंपरा का एक खूबसूरत संगम है। और आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हम बांसवाड़ा को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह महसूस करेंगे। तो आइए बांसवाड़ा की गलियों, पहाड़ियों, झीलों और यादों में चलते हैं कार्यक्रम कुछ दिल से के साथ। और इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, राजस्थान का नाम लेते ही अक्सर हमारे मन में रेगिस्तान, रेत के टीले और किले आ जाते हैं। लेकिन राजस्थान का एक ऐसा रंग भी है जहां हरियाली है, जहां पानी है, जहां पहाड़ है और जहां प्रकृति अपने बेहद खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का नाम बांस के पेड़ों से जुड़ा माना जाता है। माही नदी यहां के भूदृश्य को एक अलग ही पहचान देती है और माही से बने अनेक टापों के कारण इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ पानी, चारों ओर हरियाली और बीच में छोटे छोटे द्वीप। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद बैठकर बांसवाड़ा का चित्र बनाया हो। जहां पहाड़ों से बातें करती हवाएं हो, जहां नदियों में सपनों की रवानी हो, जहां हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराए, वही तो बांसवाड़ा की कहानी हो। इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अगर बांसवाड़ा की खूबसूरती की बात हो और माही का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। माही सिर्फ एक नदी नहीं है, यह इस क्षेत्र की जीवन, कृषि, प्रकृति और पहचान से जुड़ी हुई है। माही बांध और उसके आसपास का दृश्य बांसवाड़ा को एक अलग ही रूप देता है। माही नदी में बने द्वीपों की वजह से बांसवाड़ा की पहचान और भी खास हो जाती है। और फिर आता है काग द्वीपिक अफेयर।

झील, पानी, बगीचे और फवारे, शहर के आसपास प्रकृति के साथ समय बिताने की एक खूबसूरत जगह। कभी शाम के समय पानी के किनारे बैठकर देखिए, शायद आपको समझ आएगा कि सुकून के लिए हर बार किसी बड़े शहर की जरूरत नहीं होती। माही की लहरों से पूछो कितने किस्से बहते हैं, इस शांत पानी में कितने सपने रहते हैं। जो एक बार यहां ठहर जाए वो शायद यही कह पाए, बांसवाड़ा सिर्फ देखा नहीं जाता, बांसवाड़ा महसूस किया जाता है। ऐसी ही खास बात है इस शहर बांसवाड़ा की। आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

परसु बांसवाड़ा की पहचान सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, यहां इतिहास भी है और आस्था भी है। मां त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर बांसवाड़ा से लगभग 19 किलोमीटर दूर तलवाड़ा के पास स्थित है। मंदिर की 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा इस धार्मिक स्थल की विशेष पहचान है। और फिर है मदारेश्वर महादेव, जो प्राकृतिक गुफा में स्थित भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है। अर्चना अपने प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों और शिल्पकला के लिए जाना जाता है। वहां के मंदिरों की स्थापत्य कला हमें सदियों पीछे ले जाती है। और मानगढ़ धाम यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आदिवासी इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान पर्यटन के अनुसार 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की घटना गोविंद गुरु और आदिवासी आंदोलन के इतिहास से जुड़ी है। पत्थरों में इतिहास मिला, मंदिरों में विश्वास मिला, माटी से जब जुड़कर देखा तो अपना ही एहसास मिला। इन्हीं एहसासों के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज विश्व पर्यटन दिवस पर अगर हम बांसवाड़ा की खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी भी है। हम अपने पर्यटन स्थलों को साफ रखें, प्लास्टिक और कचरा न फैलाएं, प्राकृतिक स्थानों को नुकसान न पहुंचाएं, स्थानीय कारीगरों और कलाकारों के हुनर को प्रोत्साहित करें, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें, उन्हें बनाए रखें। क्योंकि अगर हम किसी खूबसूरत जगह को घूमने के बाद वैसा ही सुंदर छोड़कर आते हैं जैसा हम उसे पाया था, तो वो सच्चा पर्यटन है। और अगर हम अपने शहर की खूबसूरती को दूसरों तक पहुंचाने का काम करें तो हम भी अपने शहर के छोटे से पर्यटन दूत बन सकते हैं। अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचानिए, अपने शहर की कहानी दुनिया को सुनाइए। जो खूबसूरती विरासत में मिली है हमें, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाइए। तो दोस्तों, आज बांसवाड़ा की खूबसूरत यात्रा में हमने देखा माही की लहरों को, प्रकृति की हरियाली को, झीलों के सुकून को, मंदिरों की आस्था को, इतिहास की विरासत को और बागड़ की संस्कृति को। बांसवाड़ा हमें एक खूबसूरत संदेश देता है। अपनी जड़ों से जुड़कर भी दुनिया को अपनी खूबसूरती दिखाई जा सकती है। तो अगर आप बांसवाड़ा में रहते हैं तो कभी अपने शहर को एक पर्यटक की नजर से देखिए, और अगर आप बांसवाड़ा से बाहर हैं तो कभी आइएगा माही के किनारे बैठने, कागदी के पानी को देखने, त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने, अर्थना की शिल्पकला को महसूस करने और बागड़ की मिट्टी की खुशबू अपने साथ ले जाने। क्योंकि कुछ शहर घूमे जाते हैं और कुछ शहर दिल में उतर जाते हैं, और बांसवाड़ा

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:47 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं यसीन खान की आवाज में गाए कुछ राजस्थानी गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में?
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
6: इसी के साथ कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बाड़मेर के गुढ़मालानी में प्रदेश के पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने निजी बैंक आज रविवार को भी खुले रहेंगे। और विश्व पर्यटन दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 138वां एपिसोड होगा। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और

0: दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री गुरु हरसहाय विधानसभा क्षेत्र में नशा विरोधी यात्रा नशा मुक्त पंजाब के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिरोजपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रदेश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र बालोतरा जिले के गुड़ामालानी में बनकर तैयार हो गया है। इसका शुभारंभ आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी करेंगे। केंद्र में बाजरे की उन्नत किस्मों का विकास किया जाएगा। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान शुरू कर दिए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इससे पूर्व देश में 13 सेंटर संचालित है, लेकिन उनका मुख्यालय जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय हुआ करती थी, लेकिन अब उसको है जो गुड़ामालानी में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हाइब्रिड किस्मों के विकास, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, सूखे इलाकों में फसल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही श्री अन्न बाजरा की वैल्यू एडिशन को नए आयाम मिलेंगे। यहाँ पर किसान और वैज्ञानिकों के बीच में सीधी चर्चा भी हो सकेगी। बाजरा अनुसंधान केंद्र शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को बाजरा की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही बाजरा की फसल को लेकर कई रिसर्च भी किए जाएंगे। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: जयपुर में द्रव्यवती नदी पर स्थित 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और गार्डन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ये कार्य राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना की कुल क्षमता 5 मेगावाट है। उन्होंने बताया कि परियोजना से रोजाना औसतन 20,000 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक विद्युत स्रोतों पर निर्भरता कम होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान एआईआर न्यूज और फेसबुक एआईआर न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने निजी बैंकों को आज रविवार को शाखाएं खोलने के निर्देश दिए हैं। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। सरकार ने बैंक ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग लेनदेन हड़ताल से पहले पूरा करने की सलाह दी है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विविधता में एकता का प्रतीक भारत और पधारो हमारे देश की भावना से परिपूर्ण राजस्थान आज विश्व भर में पर्यटकों की पहली पसंद है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश में घरेलू पर्यटन सेवाओं का विस्तार हुआ है।
2: सरकार की नीतियों के चलते हुए टैक्स रेज में कमी करने के कारण से जिस तरह से मिडिल क्लास के पास में सेविंग हुई, आज उसका परिणाम है कि भारत का मार्केट और भारत की परचेजिंग पावर और भारत के ट्रेवल एंड टूरिज्म, तीनों चीजों को बहुत बड़ी उछाल मिली। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेवल्स की एक आदमी घर से निकल करके बाहर गया, किसी एक बाहर जगह पे जाकर के उसने कम से कम एक रात्रि का आवास किया।

0: और वापस अपने घर पे आ। ऐसे ट्रैवल जो है वो 428 करोड़ हुए हैं भारत में। हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल की ग्रोथ रेट जो है 24% की ग्रोथ रेट।
1: इधर प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य भर में राजकीय संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। राजधानी जयपुर के आमेर, हवा महल, जल महल और अल्बर्ट हॉल पर कई कार्यक्रम होंगे। वहीं कोटा के मुकुंदरा नेशनल पार्क दरा में वृक्षारोपण होगा और चौरे घाट चंबल रिवर फ्रंट पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। बीकानेर के जूनागढ़ परिसर में स्थानीय लोक कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कृष्ण कुमार ने बताया कि किताबों से दूर होते जा रहे युवाओं को पुस्तकों से जोड़ने के उद्देश्य से साइलेंट रीडिंग सेशन का आयोजन भी किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी तेज गर्मी और उमस के बाद कल शाम मौसम ने करवट ली और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। नागौर के कुचेरा, डेगाना, रेण और मेड़ता में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे रबी की फसल को नुकसान की आशंका है जो खेतों में काट कर रखी गई है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि वहां ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई और मोहनगढ़ में ओलावृष्टि भी हुई।
2: मोहनगढ़ डेयरी क्षेत्र में पिछले करीब एक सप्ताह से जारी गर्मी के असर के बीच कल रात में मौसम ने अचानक करवट ली। दिन भर की गर्मी और उमस के बाद क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के दौरान हल्के चने के आकार के ओले भी गिरे। नहरी क्षेत्र में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान ग्रामीणों को काफी राहत मिली। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी अंबेरी हाईवे पर कल एक भीषण हादसे में कार सवार दो मेडिकल विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई, जबकि दो विद्यार्थी और ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि देबारी से अंबेरी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए रॉन्ग साइड में चली गई और सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराई। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्पतालों और आसपास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के तहत खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता, भंडारण, पेयजल और व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज बालोतरा के गुढ़ामालानी में प्रदेश के पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने निजी बैंक आज रविवार को भी खुले रहेंगे। और विश्व पर्यटन दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज के फनकार हैं अपने समय के जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर।

अपने चाहने वालों का भरपूर प्यार पाया पार्श्व गायक महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर ने अपने गीतों के जरिए जो जगह बनाई है वो उनका सुरीला करिश्मा ही कहा जाएगा।

9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर ने लगभग 50 साल तक हिंदी सिने संगीत आकाश पर राज किया और आज जबकि वो हमारे बीच नहीं हैं, तब भी उनके गीत उनके हर चाहने वाले के दिल की वादियों में गूंज रहे हैं।

मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानने वाले महेंद्र कपूर ने तय कर लिया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है और इसीलिए वो अमृतसर से मुंबई आ गए। यहां उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में पूरी योग्यता हासिल करने के लिए अलग अलग गुणीजनों से इसकी शिक्षा प्राप्त की, जैसे पंडित हुसैन लाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा। और इसी का नतीजा था कि महेंद्र कपूर ने अपनी एक अलग सिंगिंग स्टाइल बना ली। बस फिर क्या था, महेंद्र कपूर की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उस साल के मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन को जीत

महेंद्र कपूर ने जो सिंगिंग कंपटीशन जीता उसे उस दौर के जाने माने निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने भी सुना था, जो कि उस समय अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म नवरंग के निर्माण की योजना बना रहे थे। वी शांताराम को महेंद्र कपूर की आवाज में एक अलग खनक, एक अलग सी मिठास और एक अलग सा सुरीलापन सुनाई दिया और उन्होंने अपने संगीतकार सी रामचंद्र से बात की। उन्होंने भी महेंद्र कपूर को सुना, तब दोनों ने निर्णय लिया कि महेंद्र कपूर होंगे फिल्म नवरंग के पार्श्व गायक।

नवरंग फिल्म भी हिट हुई और इसका संगीत भी। उसके बाद महेंद्र कपूर को बी आर चोपड़ा की फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म थी धूल का फूल।

बी आर चोपड़ा की फिल्मों का दर्शकों को हमेशा इंतजार रहता था। उनकी फिल्मों का विषय भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता था और संगीत भी लोकप्रिय होता था। महेंद्र कपूर की एंट्री बी आर कैंप में होने के बाद उनकी वहां जगह हमेशा के लिए तय हो गई, पक्की हो गई। फिर तो उन्होंने बी आर बैनर की सभी फिल्मों में गीत गाए और सभी हिट भी रहे। गुमराह

महेंद्र कपूर को उपकार के गीत मेरे देश की धरती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में गुमराह का गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, 1968 में हमराज का गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, और 1975 में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, इसके लिए महेंद्र कपूर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। गायक महेंद्र कपूर ने अपना पूरा जीवन सिने संगीत को समर्पित किया और अपने चाहने वालों के दिलों में वो जगह बना ली जो तब तक बनी रहेगी जब तक संगीत की दुनिया में स्वर लहरियां गूंजती रहेंगी।

0: ये था पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार

0: Sound, camera, action!
1: La la la la, la la la, la la la la la, la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं।

0: और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, इतने
1: जी।
0: बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब।
1: हाँ हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ, मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था।
0: जी बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहा है, बच्चा कहा है, बच्चा कहा है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे। जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मैं उसी लिखती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
0: जी
1: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
0: अच्छा।
1: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी, कहा। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, मुझे हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
0: जी,
1: था
0: जी।
1: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले ए जागीरदार, सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
0: बिल्कुल।
1: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था।
0: हाँ,
1: उनके लिए इतना कहना ही
0: बहुत
1: काफी
0: बड़ी
1: था।
0: बात।
1: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है,
0: कम है। जी
1: है ना।
0: जी
1: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया।
0: जी।
1: तो हम गए और वो भी टेनिस खेलने गए थे,
0: अच्छा।
1: वो दिलीप साहब के साथ खेलते
0: हाँ,
1: थे टेनिस।
0: हाँ,
1: हाँ। शाम को हम पहुंचे, उन्होंने उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, बोले बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई
0: जी।
1: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और करते करते 10 बज गए,
0: रात की।
1: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले, मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाते।

0: रही हो और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइन्स हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे
0: तो अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त बिल्कुल आखिर आखिर में, सुनहरा संसार का उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी, इतना ही था बस
1: जी।
0: तो अबू साहब ने कहा नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
1: जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे, तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी,
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा, पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना, मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज
1: दी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है।

0: होती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचमदा ने सिखाया पता है, उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी,
1: शर्मिला जी कैसे बोलती हैं मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोले यही चाहिए मुझे हाँ आगे क्या है डैडी मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए बहुत यादें आपने ताजा की आज
0: जी, जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना जैसे मैं
0: जी
1: मुझे खुद को भी इस बात अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं एक लाइन ही दे दूं एक डायलॉग ही दे दूं तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी,
1: कोई भी गाना अच्छा पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम गवाएगा ना पंचम
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं नहीं तो मुश्किल है तो ये दो पार्ट्स में है गाना आपको भी याद होगा एक किशोर काका का सोलो है वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे दो शिफ्ट्स में काम होता था तब 9 से 1 और फिर 3 से आगे
0: अच्छा
1: और फिर ओवर टाइम तो वहीं सोए थे वो उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो लास्ट अंतरा लिखो और देखो लर्न द सॉन्ग तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
0: जी
1: बहुत ज्यादा
0: जी
1: गाना सीखा मैंने फिर रिहर्सल हुई जब माइक पे गए हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे
0: वो गाएगी
1: हाँ बोले गाएगी गाएगी पंचम वो गाएगी गाएगी छोड़ यार डब वब का छोड़ वही गाएगी तो वो बोले देखता हूँ डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी
0: जी
1: जब वो आए उन्होंने सुना फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है ये आवाज ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
0: सूट करती है
1: इस करके ये गाना
0: क्या
1: मुझे मिला
0: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का बताइए तेरा मुझसे है
1: बिल्कुल
0: का
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: आप ही का गाया वो सुन
1: जी जी

0: था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता
1: कोई।
0: कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे फोन जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं लोगों ने, किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, ओए मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको जन्म।

0: भुला ना तू, वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तू, आ जा।
1: हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
2: जी जी
1: देखिए
2: जी
1: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये न और सॉफ्ट, उसी को भुलाना तो आ जा आ जा।
2: क्या बात है, क्या
1: तो
2: बात है,
1: ये मैंने
2: ये
1: उनसे
2: आधार का
1: सीखा,
2: जी, ये पंचम धाम में ही
1: या
2: एक गुण
1: ये
2: थे
1: उतार चढ़ाव
2: जी
1: डायनामिक समझे से
2: जी
1: कहते,
2: जी जी
1: कहां कितना आपको जोर देना
2: देना
1: है,
2: है,
1: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
2: वाह
1: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है।
2: वाह
1: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के, पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
2: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
1: हाँ,
2: प्यार मिला, स्नेह मिला,
1: बहुत
2: उस
1: बहुत
2: छत्र छाया में आपने
1: बिल्कुल,
2: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
1: ये मेरा
2: जो
1: भाग्य ही है।
2: नसीब नहीं
1: हाँ
2: मिलता है, अच्छे
1: बिल्कुल,
2: अच्छों को नहीं मिला है।
1: नहीं
2: अभी
1: मिल,
2: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
1: ना ना
2: जिनको
1: ना
2: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
1: ना
2: सके,
1: ना,
2: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया. लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हा,
0: थी
1: हा, हा,
0: है ना
1: जी,
0: बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो था. वो पहली बार मैं उनसे मिली थी.
1: हाँ
0: उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात. ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना है.
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के भी करीब उतना ही.
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है.
1: हाँ बिल्कुल जी.
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी.
1: जी बिल्कुल.
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी ने.
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए वो नागरा क्या बोलते हैं ना नागरा वो लेकर आते
1: जी,
0: थे.
1: जी, जी.
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया.
1: अच्छा.
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन
0: जी, कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया.
1: हाँ,
0: क्या
1: हाँ,
0: नहीं
1: हाँ.
0: मैंने कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही मेरे लिए काफी.
1: जी, जी.
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा. फिर ये तो यादों की बारात वो गाना बजाए,
1: यादों की बारात निकली है, पर आपको गाना होगा, शर्त यही है.
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी.

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट, पुश बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचमदास से
1: जी
0: सी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही गा
0: हाँ
1: देते हैं
0: बिल्कुल
1: जी।
0: डा।

0: तो बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो, तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है।
1: बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचम दा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है,

0: आरके बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए. राज सर प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक एक सिचुएशन बनाओ. फिर तेरा मुझसे है पहले का उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है क्या गाती है, कर दो ना कर दो ना. अच्छा अच्छा ठीक है. ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया. तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए. तरम पम उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
1: जी
0: ए मुकेश चंद वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा.
1: अरे
0: पर उनके उनका बड़प्पन देखिए. हाँ, हाँ. ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ.
1: हाँ.
0: मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापीदा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी.
1: अच्छा.
0: हाँ. ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे. तो बापीदा की पहली फिल्म थी और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो. अब सब साइलेंस के अब तो गदा पड़ी. लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए. वो बाजा बजा कर गाते थे. हाँ, इवन हाँ, रिकॉर्डिंग्स में. हाँ. वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप.
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या बात है.
0: वहां मैंने ये एक और मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी नहीं,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है.
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए.
0: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे.
1: अरे
0: राज बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं उसमें फर्क तो होगा. अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो क्या. अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है. तरम पम तरम पम. नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो उसी से बुलवाओ.
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे. चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो. तो ये जो मैंने सब देखा ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा.
1: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है ना
1: जी.
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी
1: जी.
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी.
0: क्यों मैं समझती हूँ हर हर कलाकार के लिए ये वो है
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना. तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे.

0: एक दिन बिक जाएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल। ये हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये गाना बजाइए।
1: ये गाना हम बजाएंगे और हमारे श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं।
0: जी।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर की
0: मां है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है और ताउम्र याद रहने वाली बात।
1: और ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने, फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म। पता मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनकी शुरुआती दौर में
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच गया।
0: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला।
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी,
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
0: पुष्पा जी की आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: कीजिएगा जरूर, है
1: तब मैं आपको बताऊं,
0: मेरा ही सवाल है
1: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
0: खड़े हो गए,
1: बस वो गाना
0: जी
1: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोला, पता है ये मेरी दीदी ने तो बोले हाँ सुषमा, अरे वो ही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे बैंक में, सिर्फ आइएगा, तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
0: जी।
1: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
0: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम

0: कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं तो ये गाना नंबर वन पर होता
1: देखिए
0: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से, और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को हर घोषक ने बजाया है।
1: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, हाँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
0: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
1: कितने गुणी, बाप रे,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।

बॉम्बे टॉकीज। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज़।

0: जो कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: स्टेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र

0: तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करे। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
5: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
5: कहाँ से पता चलेगा?
4: खुद

0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
1: आरबीआई कहता है
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। दही मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है।

है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर
उनके करोड़ों

प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम, सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक

उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलेंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह
और जागरूकता

एकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े, और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है, और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं, और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है, और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से
उनकी आय में भी

बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और

सुधारने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, विदेश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं।

0: यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। दही मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: जी आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं 10 वर्षाणि प्राप्स्यन्ति। सा उपलब्धिः अस्ति सर्जिकल स्ट्राइक इति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 16-20-शततम वर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सेनया पाकिस्तान देशे स्थितेषु आतंकवादिनां आश्रयस्थलेषु सर्जिकल स्ट्राइक इति कृतमासीत्। एलओसी इति नियंत्रण रेखामतिक्रम्य अस्माकं वीरभटैः यथा आतंकवादस्य विरुद्धं सैन्य कार्याचरणं कृतं तद्दृष्ट्वा जगदिदं आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल स्ट्राइक इत्यनेन दृढ़तया संपूर्णस्य विश्वस्य समक्षं भारतस्य आतंकवाद विरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनम् उदाहरण प्रस्तुतमासीत्। आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं यां पीडाम् असहत सर्जिकल स्ट्राइक इति तस्याः पीडायाः विरुद्धं भारतस्य निर्णायिका प्रतिक्रिया आसीत्। विगतैक दशके बालाकोट विमानाक्रमणात् आरभ्य ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियान पर्यन्तं भारतेन पुनः पुनः स्पष्टः संदेशः प्रदत्तोस्ति यत् यदि आतंकवादिनः भारतं प्रति कुदृष्टिं क्षेपयिष्यन्ति तर्हि तस्य कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। सखायः आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं पीडितमस्ति। एकः कालः आसीत् यदा भारते क्रमिक विस्फोटानां घटना अत्यन्तं सामान्यः विषयः आसीत्। सेप्टेम्बरस्य अस्मिन्नेव मासे अर्थात् 18-20-शततम वर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 13 तिथौ दिल्ली नगरे घटितेषु क्रमिक विस्फोटेषु बहवः

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मन की बात। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 91.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरि का, फिल्म का नाम है डर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुने अगला गीत। महेंद्र कपूर की आवाज में नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कॉम।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत पोस्ट करते हैं और उनमें से आपको शब्द ढूंढने होते हैं और गाने चुनने होते हैं और साथ में आपकी अपनी टिप्पणियां साझा करनी होती हैं। और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है, तो एक बार इबारत हम दोहरा देते हैं जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले। कहाँ घूमे? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। नहीं नहीं, वहाँ चले जहाँ मिलता है सुकून। कहाँ? जहाँ तुम कहो। ये कहाँ आ गए हम और फिर तुम कहो। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, फिर ऐसी वादियों में चलेंगे जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हो और कोई धीमी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हो। कहाँ कहीं रुकेंगे? हाँ, जहाँ नदी का पानी इतना साफ हो कि उसमें आसमान भी अपना चेहरा देखे, और अगर शाम हो गई तो चांदनी को साथ लेकर किसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इतना घूमना किसके नाम? पर्यटन के नाम? या ये सफर तो बस दिल के नाम है। और अगर रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो मुस्कुराकर कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली उस दुनिया की तलाश में, जहाँ सफर भी कहानी हो और मंजिल भी। फिल्मी हो गए हो आज तो। क्या करें, यश जी की फिल्मों ने ही तो सिखाया है कि पहाड़ों के बीच भी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बस सकती है। तो फिर अगला पड़ाव जहाँ तुम हो, वहीं से सफर शुरू। तो चलो तुम, हम और ये वादियाँ कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच। लेकिन वादा करो नदी के पानी को साफ सुथरा रखेंगे। एक कागज की कश्ती तिराएंगे और खुद भी एक कश्ती में बैठ चलेंगे नदी के उस पार, जहाँ ऊंचे पर्वत के दायरे होंगे। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज के शब्द कौन से हैं और गाने कौन से हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप गाने सुझाते रहिए और वो गाने हम अपनी प्लेलिस्ट में डालते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। वैसे आज की जो इबारत है उसमें एक एक शब्द पर एक एक गाना है, तो ढूंढिए वो गाने भी, जरा गाने भी तो लिख डालिए। आपने पर्यटन के बारे में लिखा है, घूमने के बारे में, वादियों के बारे में, ये तो लिखते रहना है, लेकिन गानों के बारे में भी लिखना है। अब जरा बूझिए कि पहला वाला गाना कौन सा हो सकता है। अब आपने तो बूझ ही लिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी डाला है कि आज यश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो लगता है आज की इबारत में यश जी को याद किया जाएगा। और एक

शायद आप भूल रहे हैं, आज तो महेंद्र कपूर की याद का दिन भी है और आज पर्यटन दिवस है। नदी के दिन को याद किया जा रहा है तो भाई बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए इन मिली जुली बातों के साथ हम सफर पर चलते हैं, सुरीला सफर। तो बताइए कौन सा वाला गाना होगा और इस गाने में कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए फटाफट। फिल्म कभी कभी, गाना कौन सा, पहचान लिया कि नहीं? लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, गीतकार कौन बताइए।

आवाजें साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन। श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं। ये पर्वतों के दायरे, ये कहां आ गए हम, नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहां तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये पर्वतों के दायरे और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी बी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया। तो जरा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहेली है आपको बूझनी है। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करे, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है तब जगह चाहे कोई भी हो सफर सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नजारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिन्दी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियां, खूबसूरत कुदरत के नजारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नजारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारे नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लू मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहां आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरी गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें, बोरीवली मुंबई सागर किनारे दिल्ली पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं, विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली मुंबई समंदर किनारे सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और हां, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और। हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि दो सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं। आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे। डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई, आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहां की यादें साझा कीजिए और वहां के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे। अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं और अपनी यादें आप ताजा करिए। और अगर आप सफर पे गए हैं और किसी पहाड़ पर किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने तो सबसे यादगार सफर कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नजारों विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की जिसके बाद वहां भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है जो संस्कृति अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं या आप भी कूड़ा

यात्रा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर। ये बहुत जरूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा, तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहां जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए चलते हैं वहीं जहां पर इबारत में वादा किया गया था और किसी ने

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहने यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूं। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमीन आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, मेरी यात्रा संस्मरण

में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ, जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहाँ पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। वे बात यहां यश चोपड़ा की फिल्मों की है लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें जरा ये भी बताइए कि आपके शहर या गांव के आसपास कौन सी जगह है जहां लोग घूमने आते हैं या कौन सी नदी है जहां पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहां कुदरत की छांव मिल जाती है तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको बूझना है फिल्म का नाम और आवाज किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सपरिवार हमने, शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहां पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहां की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव, ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहां पावन मां नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियां, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें, पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है, सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल

के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम बूझिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूं, यहां के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहां की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे। भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफर का यह सफर चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है। कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सके या आपसे और कोई सवाल पूछ सके। तो बस आज का सफर बस इतना ही, कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर्यटन यानी दुनिया को करीब से देखना। पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम किसी अनजान शहर की गलियों में घूमते हैं, किसी ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो हमारी दुनिया और थोड़ी बड़ी हो जाती है। कभी कोई सफर हमें पहाड़ों तक ले जाता है, कभी समुद्र के किनारे और कभी इतिहास की उन इमारतों तक जो सदियों पुरानी कहानी कहती हैं। पर्यटन हमें अपने देश की विविधता से परिचित कराता है। भाषा बदलती है, खानपान बदलता है, पहनावा बदलता है, लेकिन हर जगह इंसान और उसकी मेहमान नवाजी हमें उससे जोड़ती है और इसीलिए पर्यटन यानी घूमना फिरना हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

आज पर्यटन का मतलब केवल घूमना नहीं बल्कि उन जगहों की सुंदरता और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। यात्रा करते समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना और स्थानीय संस्कृति को समझना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस खूबसूरत दुनिया को देखने निकलते हैं उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही खूबसूरत छोड़ना है हमें। ये पर्यटन यानी घूमना हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता बल्कि हमारी सोच और अनुभवों की दुनिया को भी विस्तृत करता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में तो पर्यटन का संसार और भी अद्भुत है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक, राजस्थान के किलों से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों तक, हर प्रदेश अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसलिए पर्यटन केवल यात्रा भर नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को अपने भीतर सहेजना भी है।

हम देखने जाते हैं वहां कूड़ा फैला देना यात्रा नहीं हो सकती। जिन ऐतिहासिक इमारतों को देखने हम जाते हैं उनकी दीवारों पर अपना नाम लिख देना उस विरासत का घोर अपमान है। जिस नदी, झील या समुद्र के किनारे हम सुकून ढूंढने जाते हैं उसे गंदा करना, कूड़ा करकट फेंक देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। आज जरूरत ऐसे पर्यटन की है जिसमें हम घूमने के साथ साथ प्रकृति, संस्कृति और विरासत का सम्मान भी करें। हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर जगह की अपनी बोली है, अपना संगीत है, अपना स्वाद है और अपनी परंपरा है। यही विविधता पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और समझने का माध्यम भी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार किसी यात्रा से लौटने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने केवल कोई जगह नहीं देखी बल्कि अपने भीतर भी कुछ नया खोजा है।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1,000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम

0: काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेन्द्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जैन पेटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इन एक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए

0: सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
1: एनएक्सएल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे गैप को कम से कम करें, मेटरनल

0: वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभिजीत सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरूषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रूपये का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभिजीत सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था ओपी नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आई दिन बहार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का

पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर, अमर तामकर, दिलीप वर्मा, राजू तामकर, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और मम्मी पापा, नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे, गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रूपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूरजहां रहीम, शरीफ खान, रूबीना, अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। बदलापुर जिला ठाणे महाराष्ट्र से सिद्धांत गवाहनकर, प्रणीता, अर्जुन, टुक टुक, प्रिंस और एकांश गवाहनकर। मेहरे नगर अमरखेड़ विदर्भ से डॉक्टर वैशाली शैलेश गवाहनकर, श्वेता सुजीत गवाहनकर, ध्वनि और सरिता अभिजीत गवाहनकर। सावंगी महाराष्ट्र से गजानन जिरवार, प्रकाश निजीभा और मिथिलेश जिरवार। विनायक नगर निजामाबाद तेलंगाना से ज्योति श्रीहरि कूचन, राजकमल सिनिग्दा, विनोद कुमार, ग्रीष्मा रामनंदन और समस्त कूचन परिवार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुर्चे तुम, सोनू और मोनू, दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख,

0: दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, मुजतबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।
1: दिल

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालीगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तुमने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी?
5: अब क्या है
4: रमेश बाबू, आप लोगन के बहुत हला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकालें, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
5: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
5: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होते बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही है।
5: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
4: मुझे इतना टाइम कहाँ जो गप्पे मारूं, चलती हूँ। राम राम।
5: अपना

0: इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थियों मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा न सही मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
1: ललिता इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
0: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
1: इसमें तुम्हारा क्या कसूर? भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
0: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
1: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
0: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी न हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
1: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ न कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी न माने तो अभागा।
0: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
1: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
0: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
1: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
2: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
1: ये बिहारी बाबू का घर है।
2: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइड ठीक नहीं दिखती।
1: आपको किसकी शादी करनी है?
2: अपनी?
1: हा?
2: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
1: ठीक है ठीक है।
2: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
1: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता, देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
2: शगुन नहीं, बांकेलाल। बांकेलाल, मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
0: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं? तब तो बात बन गई।
2: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
1: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
2: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
1: क्या आपकी माँ बीमार है?
2: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है। हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना?
0: हाँ सो तो है। बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना?
2: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
1: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। खाते पीते घर के हैं बांके बाबू।
2: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला? पर माँ कहती है शादी कर ले।
0: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
2: अरे कुछ नहीं।

0: पीली धोती पहनाकर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैला दूंगा। हाँ, बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
1: अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
0: अभी कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
1: ललिता एक फोटो तो दे दो।
0: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
1: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
2: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
3: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है, समय का सही उपयोग करना चाहिए।
2: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
3: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
2: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
3: यही सही समय है।
2: कैसा समय?
3: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
2: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
3: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
2: कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
3: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
4: प्यारी चाय दे जा।
3: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
2: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
3: आखिर क्यों?
2: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
5: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
2: प्यारी तो चुप रहे। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं, जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं।
3: अच्छा लीजिए चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
2: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनिमिक हूँ।
3: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनिमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियाँ शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
2: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको। इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूं।
3: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
2: शायद अब वो समय नहीं है।
3: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
2: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
3: इतने रुपए थे, भाई अभी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था?
2: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
3: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
2: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
3: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें।

0: हाथ में सिंदूर और गोद में बच्चा। सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
1: मगर कौन समझता है इस बात को? तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
2: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
0: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
1: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
0: देखो, इस तरह मन छोटा न करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौत के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौत के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौत के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
1: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूँ फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बन्नाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
0: बहुत बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
1: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
0: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
2: बीवी जी, हाँ? जी बात पर ले आओ गर्मा गर्म चाय।
0: अरे चाय ही नहीं, मिठाई। अभी जा, औरत औरत।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं। अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं चारों ओर पुष्पी पुष्पी कर रहे हैं।
1: हाँ इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ, सुन रही है वहाँ शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार? घर में आई नववधू का भी उसका ख्याल नहीं?
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्में हैं। पति कैसा भी हो, इस डोर में बनने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
0: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों? क्यों नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वो वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना, रहस्यमयी बन जाना।
0: इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर।

0: देख तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई?
2: कौन जाएगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ पास आओ। ये सिर क्यों नहीं रखता?
0: नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
0: वो ठीक कह रहे थे, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: नहीं होगी तो मैं ही आ जाता
0: हूँ। ना ना, मैं बीच में ये तकिया रख देती हूँ।
2: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी
2: सीमा। अच्छा, अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
2: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
2: बहुत अच्छे हैं। अब क्या कर रही हो?
0: अब वेणी में फूल गूंद रही हूँ।
2: ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया ना।
0: ये फूल बसंत ने दिया।
2: मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह!
0: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
2: रति की तरह सुंदर? मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
0: चल चल, मेरी सुंदरता बढ़ रही है, मैं रति हो गई हूँ।
2: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर, मैं तो वही रहा हूँ।
0: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
2: अरे सीमा की कोई बात नहीं है, मैं हर किस रुक नहीं सकता।
0: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
2: तुम क्या सोचने लगे हैं? देखो, अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
0: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं?
2: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तो बहुत ही सुंदर हो गए। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं? मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट, यही सब।

0: आज कोर्ट भराई होनी है ना, मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
0: टालने की क्या जरूरत?
2: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
0: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
2: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
0: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
2: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
0: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी, अरे नीमा दीदी कहाँ गई?
3: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
0: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा दीदी, नीमा दीदी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं गिद्धों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूँ, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहाँ, किससे कहूँ? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: अरे नीमा बीबी तो बड़ा आवाज पड़े हैं। बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
0: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
1: नहीं नहीं भाभी आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
2: मैं चलूं तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी।
1: हाँ, नहीं तोड़ सकी।
0: डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई?
1: कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है।
0: फिर गलत क्या है?
1: क्यों बतलाऊं, तुम हो कौन?
0: नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी।
1: थी मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है?
0: अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ।
1: फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूँ? वहाँ तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे।
0: जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न?
1: तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
0: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
1: तब अपने पैक से कागज निकालो और लिखो।
0: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
1: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो।
0: लिखो,
1: मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
0: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता।

0: जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा?
1: वो
0: सामने लेटर बॉक्स में डाल दो। फिर क्या होगा?
1: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
0: मुक्ति?
1: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।
2: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। ये हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
4: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
4: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पाऊं,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह।

0: ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
1: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूं कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
0: अच्छा,
1: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
0: खुद ही गा रहे हैं?
1: खुद ही गा रहे हैं।
0: गाना कौन सा था?
1: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
0: जी, जी।
1: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून वून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
0: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौटे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
0: जी।
1: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा हा।
0: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
1: सारी उन्होंने वहां निकाली।
0: गजब की बात है ये तो।
1: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया, तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया। नाउ ही इनटू म्यूजिक।
0: गजब की बात है ये।
1: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
0: हाँ,
1: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
0: हाँ,
1: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे वो।
0: बाप रे,
1: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की। कौन सा गाना मुझे याद नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग की।
0: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था। वो गाना यहाँ सुन लेते,
1: हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलता उत्तम यहां मदन जी का चलते हैं, वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का प्यानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था, मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी,
1: दिल ढूंढता है गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग दी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: ही वॉज सो ड्रंक कह दो या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वॉज। वो पूरे ऐसे बैठ के, बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके ही डजंट एनी थिंग, इट वॉज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन तमाम चीजों का गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना

0: अब ये सैड है
1: जी।
0: दिल ढूंढता है फिर डडा डडा डिरी रा धारे रा डिरी, वही पोएट्री है उसको एक सैड और एक और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में
1: जी जी। एक ही गाने
0: की याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है
1: जी।
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ज्ञान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा।
1: एक मेटल फ्लूट सुनाई देती है,
0: वो की फ्लूट है, वो उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वो
0: सैक्सोफोन के बहुत,
1: क्या बात है,
0: मुरली सिंह करके
1: जी,
0: जो पंचम जी के असिस्टेंट भी थे
1: बिल्कुल,
0: और हमने साथ में बहुत काम किया।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था, उनसे बहुत लंबी बातें रिकॉर्ड की थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं
1: जी बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई उन पे खत्म हो गई,
1: क्या
0: ऐसा हुआ
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन, हंसते हंसते
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था डरियस, तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे।
0: जी जी,
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा, तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं आने गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब,
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब,
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक,
1: किसके लिए म्यूजिक बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी याद।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: National Institute of Open Schooling invites applications from eligible candidates for one post of an accounts officer, Group A, Level 11, to be filled on
2: the... ...simulation to honge. Phir, andar se, aray, music ko nahi bajate. Music suna. Kaisi, Shamra, music suna. Phir chup.
3: Aray?
2: Ye, ma'am, soch rahi hai, nahi, bachche, yari ki, ye kya ho raha hai? Music actor bol raha hai, music suna, hoi, hum sab chup baithe ho, music ready hai. Kaisi bolte, aise thori na sunayenge.
3: Aayi?
2: Haan. तो फिर कैसे सुनाओगे? पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही. अभी प्यार कौन सा? अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई. अरे हम तो हैरान हो गए. मैं कहे यार ये कौन सा प्यार है यार. वहां की वहां गाली म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ. अब सुनाओगे ना? सुना. अब सब थालिया बजा, अब सुनाएंगे म्यूजिक. और उसके बाद म्यूजिक शुरू
3: हुआ. ये प्यार था, ये
2: म्यूजिक शुरू हुआ. आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया, दो ढाई घंटे तीन घंटे में गाना खत्म.
3: वाह वाह वाह वाह,
2: ये पहली याद थी हमके साथ.
3: क्या बात है,
2: ऐसा एटमोसफियर. आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
3: तब बजाएंगे,
2: तब हम बजाएंगे.
3: गजब गजब.
2: तो ये एटमोसफियर था
3: जी. उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए?
2: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए.
3: अच्छा,
2: याद नहीं.
3: एसजी बर्मन.
2: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
3: उनकी यादें बांटी है.
2: बर्मन साहब के यहाँ तो बजा ही रहते क्योंकि सेम ग्रुप था
3: जी जी.
2: पंचम जी का इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी.
3: हाँ,
2: शायद गाइड होगी.
3: ओके.
2: तो हम लोग बजा रहे थे

0: रिहर्सल होगी रिहर्सल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मलोरी को पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए, तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मलोरी को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए,
1: अरे बाप रे
0: जैसा उत्तम बजा रहा है
1: गजब।
0: यूनुस जी मैं बैठा था सेकंड या थर्ड रो में, सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया।
1: वाह।
0: मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो और अपनी धुन के पक्के,
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: है? और एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मलोरी ने छोड़ दिया था
1: जी,
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा।
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
1: जी।
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मलोरी तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको काम करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली काम करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैंने कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैंने कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया है, बासु मलोरी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैंने कहा दादा मैं नहीं कर पाऊ। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा।
1: हाँ।
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी।
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें।
1: जी जी।
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब भालो
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी।
0: मेरे को सबका ऑफर आया।
1: जी।
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लेडी का ऑफर आया, अनु मेलक मेरे पीछे, शंकर जयकिशन का ऑफर आया, आर्ट डिपार्टमेंट का बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा, मदन जी का ऑफर आया मुझे।
1: जी जी।
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे,
0: मैं उनके अंडर में, उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ?
1: जी।
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक, किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे?
0: एज ए म्यूजिशियन बजाते,
1: दादा के लिए भी बजा।
0: हाँ हाँ दादा के लिए। लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था।
1: जी।
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे।
1: हाँ हाँ।
0: तो फिर वो ग्रुप पूरा, फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके एंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका।

तेरा ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: हाँ,
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमयी किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या है, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेंट हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम है, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन है, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त है।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, आप कोई सोच भी नहीं सकते
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, भुखड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू हुआ, अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू हुआ और अंदर से कट हुआ,
0: अरे अरे
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस पे
1: कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। अगर उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे
0: जी जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था। अभी हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है? अभी अन्ना बोल रहे, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है? चुप रफी साहब, आप जो ये क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है।
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: टेक खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही।

0: ओके हो गया। एक छोटी सी जगह थी, बोले वो संगे जगह की जगह है, ये मेरी जगह है।
1: दादा याद है?
0: नहीं वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ आए इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
1: जी जी जी,
0: ऐसी हमारी हालत थी
1: जी।
0: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकराचार्य का बजा रहे हैं, तो ये हालत
1: लगातार भागदौड़ होती थी।
0: लगातार भाग।
1: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
0: ये सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
1: जी।
0: तो केसी जी, भूपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ भी
0: ज्यादा गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
1: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
0: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
1: अच्छा,
0: भज्जी एक वकील थे, विदेशन थे।
1: हाँ,
0: वो भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
1: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
0: और केसी जी।
1: जी,
0: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
1: जी,
0: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
1: जी,
0: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको।
1: तो पार्टियां वो लोग करेंगे,
0: पार्टियां वो लोग करेंगे क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
1: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
0: बदमाश तो सारे थे। सारे बदमाश थे
1: जी जी।
0: म्यूजिशियन जो है ना
1: जी,
0: एक्चुअली बदमाश होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि
1: आप और भी थी बदमाशियां?
0: हाँ, नहीं नहीं, हमारी बदमाशी भी क्या म्यूजिक में निकलती थी।
1: अच्छा,
0: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
1: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
0: जी, मैंने राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
1: जी,
0: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
1: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
0: हाँ, बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे। ऐसा डायरेक्टर पैदा नहीं होगा।
1: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया?
0: मेरा एक पांव मद्रास में, एक पांव बॉम्बे में।
1: तो वहाँ आप बतौर अरेंजर होते थे?
0: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
1: आई,
0: और कभी कभी उनके बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
1: वाह,
0: और हम साथ में खाना खाते थे, साथ में चलते थे।
1: लैंग्वेज की प्रॉब्लम?
0: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
1: क्या बात है, इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती है, बहुत इंट्रिकेट काम होता है।
0: बहुत।
1: तो कुछ यादें बताइए।
0: मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
1: क्या बात है,
0: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
1: जी,
0: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम A to Z।
1: वाह,
0: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है, ये ही नोज।
1: वाह,
0: तो ये मोस्ट लर्नेड हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे, बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आरडी बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला, एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
1: जी,
0: वहां पे अरेंजर की जगह है
1: जी,
0: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे।
1: बिल्कुल,
0: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है,
1: इलैयाराजा का खुद करेंगे
0: सारा काम, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा डायरेक्टर है।
1: क्या बात है,
0: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं,

0: जब 16-20 होते थे बजा भी कुछ रहा, लेकिन स्टिल व्हाट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
1: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है,
0: हाँ सुरेश वाडकर
1: जी, आपने बजाया?
0: मैंने बजाया।
1: ऐ जिंदगी गले लगा दी।

0: इसलिए राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई नैयर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी हुई यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जब फिल्में आई थी
1: तब मुझे बुलाया था।
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी,
0: आपने मना कर दिया।
1: नहीं कर पाया आपके साथ। नैयर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री।
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स और दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नैयर साहब।
0: अच्छा, फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि अभी ये प्रोड्यूसर को बोला कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना। ये मैंने किस्सा सुना हुआ है।
0: जी जी,
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने। तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नैयर साहब इज द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रूपये करना सिंगर का, ये नैयर साहब।
0: वाह,
1: रवि साहब 500 रूपये लेते, 5000 रूपये दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मनोरी जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रूपये डाल दिया, 100 रूपये डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नैयर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नैयर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किया है।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वही पर मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नैयर साहब की शैली,
1: पूरी नैयर साहब को लेके। और क्या होता ना, देखिए नैयर साहब नैयर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नैयर साहब है। आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नैयर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो नैयर सबको ओरिजिनल सुनते है ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ।
0: जी जी,
1: रिश्ते भी अच्छे थे। नमस्ते नमस्ते थी
0: बख्शी साहब,
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है कि टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब, एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीकदान,
1: वो पीकदान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था यशराज फिल्म की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये टेलीफिल्म है,
1: टेलीफिल्म,
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली लड़के
0: जी
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं। हाँ, यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो संगीत सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया।

0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में।
1: एक दिन में,
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी।
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी।
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट।
0: दो से ज्यादा नहीं
1: कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद में रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 1-1 बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: जिंगल ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन 10 म्यूजिशियन बहुत हुए। लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
1: हाँ, मतलब समझिए किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्में, जो हिट गाने हैं, वो सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गज़ल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली,
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मेरा जो गजल में से एक गजल सुनी जाए फिर।
1: जरूर सुनिए, उसमें वायलेंस वो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होता है,
1: क्या होता है, यस,
0: है ना, यस। तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी सजा नहीं दिया
0: जी,
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू
0: कव्वाल सर।
1: जो कव्वाल थे, मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने तो कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। उन्होंने नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: कैसा, ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी
0: जी जी।
1: हाँ, 60s 65 मोस्टली 65
0: जी,
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहले उनका, उसके बाद में मैं, जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे डायरेक्टर थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बी एन बाली, ऐसे काफी लोग, छोटे छोटे डायरेक्टर थे, सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
0: अरेंजर के तौर पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रूपये में 2 गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रूपये में
0: जी
1: 2 गानों का अरेंजमेंट करना, तो 2 गाने सुबह 2 गाने शाम, तो दिन के 60 रूपये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रूपये 2 गाने का ले, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रूपये।
0: अरे अरे,
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहां से आ गए सुबह सुबह? जी आ गए। अच्छा, आ जाओ, चाय पियोगे? मैंने कहा जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रूपये 2 गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रूपये ले जाता है, कोई 70 रूपये ले जाता है, कोई तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई। उन्होंने मुझे निकाल ही दिया।
0: ओ,
1: पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी जी।
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए। और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम शामिल।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
0: जी,
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया
0: जी।
1: अब पूरे म्यूजिशियंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता, तो आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट एनीबॉडी। मैं मेरा बैलेंस मैं करूंगा।
0: अच्छा,

0: तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना, वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई,
1: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन किए।
0: अच्छा,
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते हैं जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछते थे कि गाना तुम इसको कैसे करना है, इसको या क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है
0: बिल्कुल।
1: हम आपके हैं कौन,
0: क्या बात है,
1: हम आपके हैं कौन, और मैंने प्यार किया जो है
0: ये भी बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे, लेकिन अरेंजर आप थे।
1: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी है। मेरे बिना कुछ वहां हिलता नहीं था
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने एज ए अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है
0: जी जी।
1: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे,
0: फर्स्ट म्यूजिक सेकंड
1: म्यूजिक साहब म्यूजिक खुद मेलोडी खुद बना देते थे
0: जी।
1: नौशाद साहब हो गए, संगेशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे, तो अरेंजर खाली लिखता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: अरेंजर लिखता था, उसको थोड़ा सजाना वजाना, कॉर्ड डालना, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
0: तो आप तय करते थे कि यहाँ इतने वायलिन होंगे, मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
1: क्योंकि म्यूजिक सारा मेरा होता था ना
0: जी। और वो पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका चलन क्या होगा, वो सब आप
1: मदन साहब का बजा दिया
0: जी,
1: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया बल्कि
0: जी जी।
1: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक है कंपोज पीसेस है, मैंने पैर का उठा लीजिए आप, हम आपके ओन उठा लीजिए, मेरे अपनी म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो बगल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए
0: जी,
1: उत्तम जगदीश थे
0: जी जी।
1: तो सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ है।
0: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट जिस तरह से चलती है, और वो तो वो सारा आपका तैयार किया,
1: सारा मेरा बनाया हुआ है
0: जी।
1: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था तारा, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी।
0: हाँ वही बात है।
1: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
0: क्या बात है,
1: और बहुत लोगों ने यूज किया वो
0: एक आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है
1: बिल्कुल।

0: यहाँ
1: से वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है
0: हाँ।
1: या मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
0: हाँ।
1: वो बहुत कमाल है।

आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

इवेंट के अंतर्गत आई हूँ आपको जानकारी देने हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के पहले रात के सभा के शेष रहे मुख्य कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे विश्व पर्यटन दिवस अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाए विषय पर चर्चा। भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे माइना से कहानी। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 में प्रताप सिंह हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले के चिट्ठे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किसान श्रोता सिंह उनका अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00।

रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

रात 10 बजे आप सुनेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशिया खेल 2026 के 20वें संस्करण के डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10:20 पर। रात 11 बजे

रात 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए एक नजर हमारी कल के प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजा रहकर हमारी प्रातःकालीन रेडियो तुंगो का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रामचरित मानस गान सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर। प्रातः 6:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम के तीनों बाद का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

बजे 7:20 मिनट पर आप सुनिए कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ देर से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनिए प्रातः के 8:45 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM बैंडिक्स 1.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

जय हिंद बच्चों। बच्चों के मुख से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बच्चों को अपनी दीदी तस्लीम कौसर का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों आप जानते हैं कि पेपर बेग के लिए कहा जाता है कि पेपर बेग समझदारी का टैग। जी हाँ बिल्कुल सच है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन पंक्ति है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक छोड़कर कागज के थैलों का इस्तेमाल करना एक समझदार नागरिक होने की पहचान है। भविष्य की सुरक्षा हेतु समझदारी दिखाएं और हर जगह पेपर बैग कभी ना लेकर जाएं। कागज का थैला अपनाना मतलब पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। सच्चा नागरिक वही होता है जो पर्यावरण से प्यार करे और पेपर बैग को स्वीकार करे। बच्चों पेपर बैग का इस्तेमाल करने का हम आपको फायदे बताएं तो यह 100% बायोडिग्रेडेबल यानी गलती योग्य होता है। इसे आसानी से रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण किया जा सकता है। यह मिट्टी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए आप भी यही प्रण लें कि आप भी पेपर बैग का इस्तेमाल करेंगे। और आइए अब रुख करते हैं चर्चा की ओर। विषय है विश्व पर्यावरण दिवस जो आज ही के दिन यानी 27 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी। इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण था

1970 में UNWTO के कानून को स्वीकार, इस मूर्ति को स्वीकारना वैश्विक पर्यावरण को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित करना तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि किस प्रकार पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए किस प्रकार हम पर्यावरण वैश्विक रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने में आपकी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थी चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर, और आइए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया फीडबैक चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
2: चले
3: ले आ गया नया फीडबैक।
4: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: क्षमा कीजिए श्रोताओं, जी सर, ये भी हमने जानकारी दी कि 27 सितंबर यानी आज ही के दिन हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। और आइए रुक करते हैं अपनी चर्चा की ओर। विषय है अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाएं। बच्चों, अनुशासन और आत्मनियंत्रण जीवन की सफलता का आधार होता है। अनुशासन आत्मनियंत्रण एक सफल, सुखी और सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक गुण होता है। अनुशासन का अर्थ है निश्चित नियमों, सिद्धांतों और समय का पालन करना, जबकि आत्मनियंत्रण स्वानुशासन अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने कार्यों पर संयम रखने की वह आंतरिक शक्ति है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। जीवन में इसका महत्व एवं आवश्यकताओं की जगह हम बात करें तो सफलता की कुंजी माना जाता है इसे, क्योंकि अनुशासन और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को कठिन परिश्रम करने, समय का सदुपयोग करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। ये दोनों मिलकर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, उसका समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रकृति का हर एक घटक जैसे सूर्य, चंद्रमा और नदियां एक निश्चित नियम और अनुशासन का पालन करते हैं। प्रकृति के इसी संतुलन से सृष्टि चलती है। आत्मनियंत्रण हमारे जीवन में आने वाले आवेगों, मानसिक तनाव को कम करता है, जिससे मन शांत होता है और मन स्वस्थ भी रहता है। अनुशासन आत्मनियंत्रण कोई बोझ नहीं, बल्कि यह तो वह साधन माना जाता है जो असली आजादी और सफलता हमें दिलाने का कार्य करते हैं। तो ये थी चर्चा अनुशासन और आत्मनियंत्रण विषय पर, और आइए आप सुनते हैं मायना से ये प्यारी सी कहानी।
6: बच्चों, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी बच्ची बैठी है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका नाम और आज हमें ये क्या सुनाने वाली है इसके बारे में जानकारी। तो आपका नाम क्या है बेटा?
7: माइनस।
6: माइनस, माइनस आप हमारे बच्चों को कुछ बताना चाहती हो, कुछ सुनाना चाहती हो?
7: डाकू बना संत।
6: अच्छा, कहानी सुनाओगे? बिल्कुल, तो सुनाइए हमारे बच्चों को डाकू बना संत कहानी।
7: एक बार महात्मा बुद्ध विचरण कहते हुए कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती गए। कौशल के महाराज प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। महाराजा ने महात्मा बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया, किंतु बुद्ध को लगा जैसे महाराज कुछ चिंतित और उदास है। कारण पूछने पर महाराज प्रसेनजीत ने बताया कि कुछ दिन से राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने साथ साथ निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल का नाम कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। तरकीब निकाली, वह जिस किसी व्यक्ति की हत्या करता था उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए लोग इस क्रूर डाकू को अंगुलीमाल कहने लगे। भयभीत राजा ने महात्मा बुद्ध को यह भी बताया कि उस डाकू के भय से सारी प्रजा थर थर कांपती है, जाने कब किसकी बारी आ जाए। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय कर लिया। महात्मा बुद्ध ने राजा को ढाढ़स बंधाया और वे उस घने वन की ओर चले दिए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था और महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास से निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। सहसा किसी ने कर्कश आवाज में कहा, ठहर जा, कहां जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध

0: रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा, एक भयंकर डाकू खड़ा था। ऊंचा लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग तना हुआ चेहरा और क्रोध से जलती हुई लाल लाल आंखें। उसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में अंगुलियां की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध को समझते देर न लगी कि वह दैत्य जैसा व्यक्ति डाकू अंगुलीमाल ही है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उनके होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल गर्जा, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया पर तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित रह गया। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो उसके सामने खड़ा होकर शांत भाव से मुस्कुराने का साहस कर सके। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की घिग्गी बन जाती थी। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना, हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। उस पर महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू जैसे प्रभाव पड़ा। एक बार उसे ऐसा लगा जैसे कि अनजानी शक्ति ने उसका हृदय बदल दिया हो, जैसे आत्म गलानी होने लगी। वह उनके सामने घुटने टेक कर झुक गया और बोला, भगवान मैं आपकी बात नहीं समझा। महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है पर तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया पर तुम इस पाप पूर्ण जीवन से कब छूटोगे? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे पापी का भी उद्धार कर दीजिए। अज्ञान वंश में भटक गया था, मुझे प्रकाश दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही क्रूर डाकू देखते ही देखते संत बन गया। अतः दया लूटा एक ऐसा भाव है जिसमें कभी कभी बड़े बड़े कठोर दुष्ट भयंकर डाकू हत्यारे और पापी लुटेरे भी बदलकर उदार सच्चे और पवित्र हृदय के मनुष्य ही नहीं उच्च कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं।
1: बहुत ही अच्छी कवि कहानी जो हम कह सकते हैं मायनाज ने हमारे बच्चों को सुनाई कि किस प्रकार एक डाकू संत बन जाता है महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनकर उनकी जिंदगी बदल जाती है। इसी प्रकार अगर आम मनुष्य या बच्चे आप लोग भी चाहें तो अवश्य ही अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कर जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं।
2: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सब आपकी एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
5: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
4: अरे क्यों?
5: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
4: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
6: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
4: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
5: अरे भाई,
7: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
1: और आइए फिर से रुक करते हैं चर्चा का। विषय है बच्चों को सही गलत का अंतर बताएं। बच्चों को सही और गलत का अंतर सिखाने के लिए माता पिता को प्यार, धैर्य और स्पष्ट नियमों का सहारा लेना चाहिए। यह एक दिन का काम नहीं बल्कि लगातार समझाने की प्रक्रिया है। बात करें कि बच्चों को सही गलत सिखाने का आसान तरीका किस प्रकार है, तो जब भी बच्चे कोई गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं या अनुचित शब्द बोलते हैं तो उसी समय उन्हें प्यार से टोककर समझाकर कि यह गलत है समझाया जाना चाहिए। इसी प्रकार बच्चे देखकर सबसे अधिक सीखते हैं, इसलिए घर में खुद बड़ों का आदर करें और सही आचरण रखें ताकि बच्चा आपको देखकर सही चीजों को अपनाए, गलत चीजों को नहीं। बच्चों को हमेशा समझाएं कि हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो सके।

सही काम करने पर उसे शाबाशी देंगे और उसकी हमेशा पीठ थपथपाएं। इससे उन्हें अच्छी प्रेरणा मिलती है। इसी तरह अच्छी और नैतिक कहानियां उदाहरणों के जरिए बच्चों को समझाएं कि ईमानदारी और सच्चाई क्यों जरूरी होती है। जब भी बच्चे आपसे पूछे तो आप उन्हें सही ढंग से जवाब दें। कोई बात सही या गलत क्यों है उनका मजाक न उड़ाएं, बल्कि शांत रहकर उनके सवालों का जवाब देने का अवश्य ही प्रयास करें। तभी बच्चों को सही और गलत का फर्क पता चल पाएगा। तो ये तो थी हमारी चर्चा, और आइए चलते हैं फिर से संगीत की ओर और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

फिर से रुक करते हैं चर्चा की ओर। विषय है अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम भी जरूरी। जी हाँ बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ साथ पर्याप्त आराम यानी नींद भी उतनी ही आवश्यक होती है। सोते समय शरीर की कोशिकाएं मांसपेशियों और ऊतकों की खुद की मरम्मत करते हैं।

जोखिम निरंतर घटता चला जाता है। इसीलिए 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। रोजाना एक सही निश्चित समय पर सोने की आदत डालें और दिन भर में काम के बीच बीच छोटे छोटे विराम लेते रहें ताकि शारीरिक और मानसिक थकान आपको कम हो। तिथि चर्चा अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम जरूरी विषय पर बच्चों बातें तो हम आपसे और बहुत सी करना चाह रहे हैं लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। फिर मिलने के बाद एक साथ दीजिए अपनी दीदी तस्लीम को विदा। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम का पहला गाना वीर जारा, इस फिल्म से उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये जब तक है जान इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में, बोल गुलजार के हैं, संगीत है ए आर रहमान का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम का ये अगला गाना लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें गीतकार आनंद बख्शी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है तराने नए पुराने। अगला गाना सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है शिवहरी का।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में साहिल उद्यानवी का लिखा हुआ गाना। खय्याम का संगीत, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार। समाचार के बाद तराने नए पुराने ये कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक

0: समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजर ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमों को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम चार में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: करानी नई पुरानी
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लीजिए अब सुनिए गुमराह फिल्म का गाना, आवाज है महेंद्र कपूर की, साहिल लुधियानवी की बोल, संगीत है रवि का।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

0: फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्युलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम है अवतार।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, रोशन का संगीत, फिल्म का नाम दादी माँ।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गुमराह फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत रवि का।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:28 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया खुश पर प्रतीक्षा कीजिए।
1: बनिए सतर्क रहिए। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: समझी, उनकी सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना। वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है।
0: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटल

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा, इसने विश्व को भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का परिचय दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को साबरमती से रवाना किया, कहा पिछले 12 वर्षों में रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, राजस्थान में बाजरा केवल एक फसल नहीं बल्कि किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, सरकारी स्मारकों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का जिक्र करते हुए कहा है कि आज भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में उन्होंने वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sc.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील भी की।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता के अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को कर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। उन्होंने कहा

0: की इस पहल के जरिए सस्ते और स्थानीय पौष्टिक खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री ने आने वाले पर्व और त्योहारों का भी जिक्र किया। इधर प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। जिला मुख्यालयों और विभिन्न शहरों तथा कस्बों में मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर जयपुर नगर निगम चुनाव में निर्वाचित भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने सभी पार्षदों से संवाद भी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है। श्री शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास और शुभारंभ किया। उन्होंने साबरमती स्टेशन से देश की पहली LNG चालित ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। गृहमंत्री ने कहा कि रेलवे विद्युतीकरण 2010-2011 में महज 75 किलोमीटर प्रति वर्ष था, जो बढ़कर लगभग 7188 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया है।
1: LNG से चलने वाली ट्रेन का लोकार्पण हुआ है, जो आने वाले दिनों में बहुत पर्यावरण की सुविधा का काम करेगा। नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब JNPT मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
0: कार्यक्रम के दौरान लोकोमोटिव रखरखाव शेड, स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम का उद्घाटन और स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि दूरों की धरती में बाजरा केवल एक फसल नहीं बल्कि किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। श्री चौधरी आज बालोतरा जिले के गुड़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक और प्रयोगशाला भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना से पश्चिमी राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बाजरा उत्पादन, नई कृषि तकनीक और नई तथा उन्नत किस्मों पर अनुसंधान को गति मिलेगी। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा। इस अवसर पर आयोजित बाजरा कृषक सम्मेलन 2026 और कृषि प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने भाग लिया। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर मंथन होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर रहे। उन्होंने नशा विरोधी यात्रा नशा मुक्त पंजाब के तहत जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रा का लक्ष्य पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। श्री शर्मा ने कहा कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी से ही नशे के खिलाफ चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान को सफल बनाया जा सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप बनाया है कि नशा मुक्त कैसे करना है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, निश्चित रूप से हम पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया है और ये हमारा अभियान जारी रहेगा, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम पूरी सामूहिकता के साथ इस नशा के खिलाफ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इस नशे के खिलाफ जो हमारी सरकार केंद्र की काम कर रही है, हम पंजाब के अंदर भी नशा मुक्त कर।
0: आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित

0: करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए पर्यटन को एक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। श्री शेखावत ने पर्यटन के लिए भारत को विश्व का पसंदीदा देश बनाने का संकल्प मजबूत करने की अपील की। विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य भर में राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। सवाईमाधोपुर में पर्यटन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन पर देशी विदेशी पर्यटकों का परंपरागत रूप से तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भरतपुर के संग्रहालय और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी पर्यटकों को निःशुल्क भ्रमण कराया गया। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आज विकसित भारत जन सेवा अभियान और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई गतिविधियां गुंबद पर स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अंत में वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वहीं झुंझुनू जिले में खेतड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय में आयोजित सेवा सेतु शिविर का जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने निरीक्षण किया। इस दौरान श्री गर्ग ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पाली में भी अभियान के तहत पोषण और पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी, रंगोली तथा चित्रकला सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ का टॉलरेंस नीति का परिचय दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को साबरमती से रवाना किया। कहा, पिछले 12 वर्षों में रेलवे ने उल्लेखनीय परिवर्तन। राजस्थान में बाजरा केवल एक फसल नहीं बल्कि किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सरकारी स्मारकों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। सेवा संकल्प अभियान के तहत गुजरात के वडनगर से रवाना हुई बाइक रैली के कोटपुतली पहुंचने पर इसका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नारेहड़ा गौशाला में गौ सेवा कार्यक्रम और गोगाजी मंदिर में सेवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आमजन की सुविधा और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से नगर परिषद बहरोड में 24 से 26 सितंबर तक स्वच्छ बहरोड स्वस्थ बहरोड थीम पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर परिषद कुमारी भाजित कर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 89 टन कचरा ऑटो टिपर और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से डंपिंग यार्ड पहुंचाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने की दिशा में भी जिले में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। विकसित भारत जनसेवा अभियान 2026 के तहत 26 से 28 सितंबर तक गिरदावर सर्किल मुख्यालयों पर सेवा सेतु अभियान के शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को एक ही जगह पर 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वयं सहायता समूहों का गठन और बैंक खाते खुलवाने, स्वच्छता कार्य, वन विभाग की सेवाएं, मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीबी स्क्रीनिंग, पशु स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने दीप प्रज्वलित कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और उन्नति की सामूहिक मंगल कामना की। युवाओं से संवाद को लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरूका ने जिला स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की।

दौरान जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने युवाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 के विजन के साथ युवाओं से नशे सहित विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिले में सड़क तंत्र को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 166 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए सड़क विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जेपी यादव के अनुसार बजट घोषणा 2026-27 के तहत 90 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से करीब 71 किलोमीटर लंबाई के 9 सड़क कार्य शुरू हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में लक्ष्य से 38.54% अधिक पौधरोपण किया जा चुका है और अब तक 17 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। विराटनगर उपखंड के अंतिला में 20 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर विकसित उद्यान में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए भी जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर अवैध कट्स बंद कराने, ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रसद विभाग की टीम ने जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण किया। गैस सिलेंडरों के रखरखाव, अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। निरीक्षण में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन पाया गया और ऑनलाइन दर्ज स्टॉक तथा भौतिक स्टॉक में कोई भी विसंगति नहीं मिली। विभाग ने उपभोक्ताओं से गैस पाइप की समय समय पर जांच करवाने और लीकेज जैसी स्थिति में तत्काल गैस एजेंसी से संपर्क करने की अपील की है। इसी के साथ कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले आज री खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक री 10वीं वर्षगांठ रो जिक्र करता थका कयो, आ विश्व ने भारत री आतंकवाद रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रो परिचय दियो। गृह मंत्री अमित शाह देश री पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी ने साबरमती सु रवाना करयो, कयो लाडला 12 वर्षा माए रेलवे माए उल्लेखनीय परिवर्तन हुयो। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कयो, राजस्थान माए बाजरो केवल एक फसल नहीं बल्कि काश्तकारी आजीविका रो खास आधार। और विश्व पर्यटन दिवस रे माथे प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा गया, सरकारी स्मारक माए सैलानिया ने निःशुल्क प्रवेश दियो गयो।

0: समाचारों के साथ है मैं संगीता शर्मा और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद रे खिलाफ भारत री नीति रो जिक्र करता थका कहो है कि आज भारत आतंकवाद रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ले चाल रियो है। आज आकाशवाणी सु प्रसारित मन की बात कार्यक्रम री 138वीं कड़ी माए वणा बरस 2016 री सर्जिकल स्ट्राइक रे 10 बरस पूरा होने रो जिक्र करता हुआ कहो कि देश काले यानी 28 सितंबर ने इन स्ट्राइक री 10वीं वर्षगांठ मनावेला। श्री मोदी कहो कि दुनिया ओ देखकर हैरान रह गई है कि आतंकवाद रे खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक खातिर किन तरह बहादुर भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पार करी ही। प्रधानमंत्री कहो कि भारत बार बार ओ साफ साफ संदेश दियो है कि अगर आतंकवादी भारत माथे आंख उठावेला तो उनो करारो जवाब दियो जावेला।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी

0: आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री कहो कि जनगणरारो पहले सगला आंकड़ो दर्ज कर जा चुको है। श्री मोदी ऑनलाइन अर्ज भी करी।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपने परिवार हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री आवता 2 अक्टूबर ने महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करता था कहो कि स्वच्छता पूरे जीवन रे मार्गदर्शक सिद्धांता माइसू एक है। वणा लोगा सू स्वच्छता रे अभियान माए बढ़ चढ़ भागीदारी निभाने री अर्ज करी। प्रधानमंत्री बतायो कि देश भर माए नशा मुक्त युवा अभियान चलायो जा रही है। वणा कहो कि नशा मुक्त युवावां और विकसित भारत रे संकल्प बढ़ाने का
0: नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत हुई है।
1: प्रधानमंत्री कहो कि सितंबर रो महीनों कुपोषण सू लड़ाई ने समर्पित है। वणा कहो कि इन पहल रे जरिए सस्ता और स्थानीय पौष्टिक खान पान ने बढ़ावा दियो जा रही है। श्री मोदी कहो कि इन महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह सू गणेश उत्सव मनायो गयो। प्रधानमंत्री आवन वाला पर्व और त्योहारा रो जिक्र भी करो। अठीने प्रदेश माए भी मन की बात कार्यक्रम ने लिए लोगा माए खासो उत्साह नजर आयो। और कस्बा माए मन की बात कार्यक्रम ने लोगा सामूहिक रूप से सुनो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने निवास माथे जयपुर नगर निगम चुनाव माए निर्वाचित भाजपा पार्षदा और कार्यकर्ताओं रे साथ कार्यक्रम सुनो। इन रे पाछे मने सगला पार्षदा सु बंतल भी करी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री की योग है कि रेलवे माए परिवर्तन हुआ है। रेलवे माए वार्षिक डीजल री खपत 293 करोड़ लीटर सू घटर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इन्हें पूरी तरह खत्म करने खातिर जतन जारी है। श्री शाह आज गुजरात रे साबरमती माए 1,500 करोड़ रूपया सू 32 लागत वाली रेल विकास परियोजना वारो उद्घाटन शिलान्यास और शुभारंभ करो। वणा साबरमती स्टेशन सू देश री पहली LNG चालित ट्रेन ने भी हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री कहो कि रेलवे विद्युतीकरण 2010-11 माए महज 75 किलोमीटर प्रति वर्ष हो जो बदर लगे टके 7,188 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गयो है और 99.6% विद्युतीकरण रो काम हो चुको है।
2: LNG से चलने वाली ट्रेन का लोकार्पण हुआ है जो आने वाले दिनों में बहुत पर्यावरण की सुविधा का काम करेगा। नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब JNPT मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: कार्यक्रम रे चालता लोकोमोटिव रख रखाव शेड स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम रो उद्घाटन और स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली री आधारशिला राखी जी। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कहो है कि धोरारी धरती माए बाजरो केवल एक फसल नहीं बल्कि काश्तकारारी आजीविका रो खास आधार है। श्री चौधरी आज बालोतरा जिले रे गुड़ामालानी माए क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र रा प्रशासनिक और प्रयोगशाला भवन रे उद्घाटन जलसा माए बोल रिया हा। वणा कहो कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना सु पश्चिमी राजस्थान री स्थानीय परिस्थितियां रे मुजब बाजरो उत्पादन नवी कृषि तकनीक और नवी और उन्नत किस्म मत है अनुसंधान।

0: ने गति मिलेली जिनसू काश्तकारा ने सीधो फायदो मिलेला। इन मौके माथे राखी जा बाजरा कृषक सम्मेलन 2026 और कृषि प्रदर्शनी में घनी तादाद में स्थानीय काश्तकार भाग लियो। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कालेसू नवी दिल्ली में शुरू हो रही है। दो दिन तई चालन वाले इन सम्मेलन का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेला। कृषि और किसान कल्याण महकमो आगामी रवि मौसम रे खातिर खास प्राथमिकतावां और तैयारियां मथे विचार विमर्श करने खातिर इन सम्मेलन रो आयोजन कर रही है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय ने मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और काश्तकारारी आय बढ़ाने खातिर कार्यनीति विकसित करने माथे मंथन वेला। सम्मेलन में राज्य रा कृषि मंत्रियां आपरी प्राथमिकता रबी मौसमरी तैयारियां खातिर सुझाव देने रो मौको भी मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पंजाब रा फिरोजपुर दौरा माथे रिया, वणा नशा विरोधी यात्रा नशा मुक्त पंजाब रे तहत जनसभा ने संबोधित करो। इन मौके माथे वणा कहो कि यात्रा रो लखस पंजाब ने नशा मुक्त बनानो है। श्री शर्मा कहो कि सगलारी सामूहिक जिम्मेदारी सु ही नशे रे खिलाफ चलाया जा रिया देशव्यापी अभियान में सफल बनायो जा सके है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप बनाया है कि नशा मुक्त कैसे करना है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं निश्चित रूप से हम पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया है और ये हमारा अभियान जारी रहेगा, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम पूरी सामूहिकता के साथ इस नशा के खिलाफ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इस नशे के खिलाफ जो हमारी सरकार केंद्र की काम कर रही है हम पंजाब के अंदर भी नशा मुक्त कर रहे हैं।
0: आज विश्व पर्यटन दिवस है। इन वर्ष विश्व पर्यटन दिवस री थीम पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोशल मीडिया पोस्ट में कहो कि अब पर्यटन न्यारी न्यारी ठोड़ारी एक यात्रा ही नहीं है बल्कि और रोजगार स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास रो एक मजबूत आधार भी बन रही है। वणा कहो कि विकसित भारत खातिर पर्यटन में एक आर्थिक शक्ति रे रूप में बढ़ावो देने रो जतन जारी है। श्री शेखावत पर्यटन खातिर भारत में दुनिया रो पसंदीदा देश बनावन रो संकल्प मजबूत करने री फरज करी। विश्व पर्यटन दिवस माथे प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जारी है। प्रदेश भर माए राजकीय संग्रहालय माए सैलानिया रो प्रवेश निःशुल्क रखो गयो है। सफाई माधोपुर माए पर्यटन महकमारी कानिसू रेलवे स्टेशन माथे देशी विदेशी सैलानिया ने रीत रे मुजब तिलक लगार माला पहनार स्वागत करो गयो। इंद्र चालता लोक कलाकारा कच्ची घोड़ी नृत्य समेत न्यारी न्यारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भरतपुर रा संग्रहालय और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में सैलानिया ने मुफ्त घुमायो जारी है। प्रदेश में न्यारी न्यारी जगावां माथे विकसित भारत जनसेवा अभियान और स्वच्छता ही सेवा अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। अलवर में अभियान रे तहत पर्यटन स्थल फतेह जंग गुंबद माथे स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम रे आखिर माएं बठे मौजूद लोगों ने स्वच्छता ही शपथ भी दिलाई जी। वठिने झुंझुनू जिला माए खेतड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय माए राखी जो सेवा सेतु शिविर रो जिला कलेक्टर अरुण गर्ग निरीक्षण करो। इंद्र चालता श्री गर्ग न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना रा लाभार्थियों सु संवाद करो। पाली माए भी अभियान रे तहत पोषण और पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी रंगोली और चित्रकला समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। और अब मौसम प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे असर सु मौसम फिरू करवट ली है। मौसम केंद्र जयपुर आज राज्य रा 16 जिला माए बिरखा रो येलो अलर्ट जारी करो है। इनसू पहले कोटा जिले रे मंडाना और जैसलमेर रे मोहनगढ़ समेत कई खेतरा माए बिरखा रे साथ है। राज्य रा कुछ एक हल्का माए थोड़ी घनी बिरखा हुई। बादला रे असर सु राज्य रा घनकर भागा माए तापमान माए थोड़ी कमी आई है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान माए तापमान अजे भी अपेक्षाकृत बत्ती बनेड़ो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक री 10वीं वर्षगांठ रो जिक्र करता थका कहो आ विश्व भारत री आतंकवाद रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रो परिचय दियो। गृह मंत्री अमित शाह देश री पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी ने साबरमती सु रवाना करो। कयो लाडला 12 वर्षा माए रेलवे माए उल्लेखनीय राजस्थान में भाजपा और विश्व पर्यटन दिवस रे माथे प्रदेश

भर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या गया। सरकारी स्मारक में सैलानिया ने प्रवेश दियो गयो। इन साथ ही प्रादेशिक समाचारों बुलेटिन अठे पूरो थयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन बजन।

0: सीख
1: और हमेशा हमारी फिक्र करना।
2: वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है।
0: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
1: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में आसान।
0: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनिए उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम हमारा और सब किसान भाइयों ने बहनों ने सोराड़े थे कि नानू बहनों राम राम राम राम। किसान भाई और सब भाई खरीफ फसल ने हाड़ हम्बाड़ा रू ला गया था कहे सब भाई बड़ा तन मन धन किया खेती नु काम करिए था कहे ना किसान भाई। देखो भैया आजकल मानसून फिरी रुका जी ही मानसून आ मैं फसल ने ले दे जरूरी है भाई जी धान नी फसल है हाड़ है ने ले दे मानसून जरूरी ही किसान भाई मानसून आवेगा जी अपने खेती नु काम है ये अपने जारी रखू है भाई जी कहीं खरपतवार नियंत्रण है या जी भी काम है ये अपने टेम अनुसार करी देवो है। किसान भाई खास आज अपन बात करूंगा किसान क्रेडिट कार्ड हूं है नीना लाभ हूं इन बारे बात करूंगा। किसान भाई देखो हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों भाई ने खेती ने पशुपालन ने मछली पालन हरू किफायत और समय ऊपर वित्तीय सहायता प्रदान करवा हरू आ एक योजना है आनी योजना थकी कम ब्याज दर में अपने ऋण लोन ले सका आना में अपन समय थकी किसान भाई भरी दंगा तो अपने 4% वार्षिक ब्याज दर थकी अपना लोन मिली सके आनम कोई गारंटी भी नहीं जुए किसान भाई 3 लाख तक अपना ऋण है ले सके हूँ अपने वधारे जरूरत हो तो इन्हें अनुसार अपन 5 लाख भी अपन ले सके आने थकी अपन खेती में खाद है बीज है कीटनाशक दवाई है या कृषि उपकरण मरम्मत है या अपने ने नवा लेवाए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है तो भी अपन आने थकी ले सकता। किसान भाइयों ने हाथे हाथे अपना डेयरी व्यवसाय भी करी सका पशुपालन या मछली पालन हर भी अपन अनु केसीसी लोन है ले सके किसान भाई आने किसान भाई देखो आ कैसी स्थिति की अपने बीमो भी सुरक्षा बीमो भी थाएगा कोई दुर्घटना थेगी तो भी अपने बीमो मिली सके है आने हरू अपने किसान भाई बैंक थकी संपर्क करवो है ने बैंक थकी जी भी अपनो कागजात है भैया आधार कार्ड है जमाबंदी है अपनो बैंक अकाउंट है तो ही अपन ले जाऊंगा बैंक थकी जी मैनेजर साहब बैंक थकी अपन बात करी ना लाभ ले सके किसान भाई क्योंकि

0: सही रहेगा और उनकी हवा भी मिलेगी और वो खेलेगा भी, फिर वो अच्छा पैदावार देगा।
1: अच्छा अच्छा कितना पानी खास जुए ना कपास में फसल में?
0: पानी तो कपास के लिए तो अभी तो समासा वाला है ही है।
1: हाँ हाँ,
0: इसके बाद फिर दीपावली के बाद फिर पानी पिलाते रहो और खाद बीज करते रहो, इसको लगभग दवाई छिड़काते रहो। एक एक बार दवाई छिड़काए तो करीब करीब 25 दिन तक दवाई चलती है।
1: अच्छा,
0: उसकी कोई बीमारी नहीं लगती।
1: हाँ हाँ,
0: फिर 25 दिन के बाद फिर दवाई छिड़काओ, फिर वो 25 दिन बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा,
0: अच्छे फूल वूल आते हैं, डोडे वोडे लगते हैं, ठेरने लग जाते हैं, यूं करके चलता रहता चलता रहता। तो फिर अपन पानी पिलाते रहोगे तो ये तो चलता ही रहेगा समूह नाड़ो।
1: हाँ हाँ, कितना तैयार थी जा कपास न?
0: कपास का लग जाए ये 2-3 महीने लग जाए।
1: अच्छा,
0: 3 महीने में अपन को।
1: अच्छी बात है प्रकाश जी, तो आना पास निराई गुडाई करवी पड़े, पास खोड़ जी अपने रह के।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: इन्हें नियंत्रण करवो पड़े,
0: इन्हें करवो पड़ेगा। अभी बो दिया है तो महीने के बाद फिर कलपा सलाना पड़ेगा अंदर बेल से।
1: कलपा दो है?
0: हाँ, बेल से कलपा देना पड़ेगा। बाकी जो जड़ों में रह जाते हैं कि?
1: हाँ हाँ,
0: जड़ों में रह जाते हैं तो फिर उस पाक में खुदाई करके बढ़िया व्यवस्थित करके
1: हाथ थकी निकालो है।
0: हाँ, फिर खाद रखते हैं, पोटास रखते हैं, डीएपी रखते हैं, यूरिया रखते हैं, तीनों मिक्सर करके फिर थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके फिर डालते हैं।
1: खाद भी आलू पड़े?
0: खाद आलू पड़े।
1: अच्छा अच्छा,
0: पैदावार थोड़ा बहुत
1: तो
0: पथरेली जमीन है।
1: अच्छा,
0: तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत खाद भी देना पड़े, थोड़ा बहुत वो भी खाद यूं करके काम अच्छा रह जाता।
1: हाँ हाँ, सही बात है प्रकाश जी, आप एकदम सरलतम शब्द में बात करी रहा था। अपनी बात पास वागर क्षेत्र पूरा हमली रहे थको है अमन। मोटा तौर पर बात खास करी आलो के भैया कपास जी पाकी
0: इन्हें डोडो लागे। डोडो लागे वो अपने आप पक्का होके फैलेगा।
1: अच्छा,
0: फैल जाएगा फिर रुई निकालनी पड़ेगी अपन को दड़किया करके बेचते हैं तो फिर ये कभी कभार तो 120 रुपए भी किलो जाता है, कभी 80 रुपए 90 रुपए एक किलो में बेचता है बिकता है।
1: या बाजार में बेचवा जाऊ पड़े नहीं?
0: बाजार में बेचवा जाऊ पड़े, दुकान पे है क्या? दुकान वाले लेते हैं तो वहाँ जाके बेचना पड़े।
1: अच्छा,
0: एक दिन छोड़ के एक दिन में फिर क्विंटल निकल गया, 2 क्विंटल निकल गया, ये निकलता है तो अपना खर्चा हो जाए न, सब कुछ हो जाए।
1: बिल्कुल भाई।
0: हाँ, वो कपास का जो लकड़ी है वो लकड़ी जलाने के लिए फिर बाद में काम में आ जाएगा।
1: अच्छा, इनकम है यार, कपास की फसल तो अच्छी है। देते
0: अच्छी इनकम अभी तो जो तो अभी टमाटर लगाए हैं।
1: अच्छा, सब्जी वगैरह भी करो है?
0: हाँ, सब्जी वगैरह भी करा है, टमाटर लगाए हैं अभी।
1: हाँ हाँ,
0: हमने मई में लास्ट मई तक 27 मई में हमने बो दिए थे।
1: अच्छा, टमाटर टमाटर नो पहले पौधा तैयार करे?
0: हाँ, आप पौधा पहले तैयार करवो पड़े।
1: हाँ,
0: तो महीना 1.5 महीना में वो पौधा खेत में लगाना पड़े, तैयार हो जाता है 1-1.5 महीना में। ओके, फिर उसको यार अच्छे तरह से खेत में ये वैसे ही जुताई करके खाद आद फेंक के मस्त व्यवस्थित करके फिर पाले थोड़े थोड़े निकाल के फिर टमाटर बोना पड़ते, लगभग 1-1 फीट मात 1.5 फीट मात वो लगाना पड़ता, 1.5 फीट के टमाटर का पौधा लगता है।
1: लगाड़ती वक्त खास करीने टमाटर ने भी पानी आलव पड़ता होगा।
0: हाँ, पानी अगर अपन गर्मी में कर दे के इस सुमासा के पहले कर दे तो आगे आगे अपन उसको रोपते जाएंगे, खेत में डालते जाएंगे और पीछे पीछे पानी आएगा तो वो तुरंत उसका वो मजबूत हो जाएगा, ने लेट करेंगे तो फिर वो सूख जाएगा गर्मी के समय में। आज निराई गोडे करी
1: जी, मैं टमाटर ने पासो कोई बांधू बांधू पड़े कोई के जमीन ऊपर कोई वगैरह नुकसान था?
0: हाँ, तो अभी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, फिर उसको खोटा लगाना पड़ेगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: खोटा लगा के बांस के खोटे लगा के फिर तार बांधना पड़ेगा। तार बांध के फिर सुतली से उसको जो बड़े पौधा होता जाता है तो वो लटक जाता है, उसको धीमे से फिर पकड़ के बांध के फिर उस तार पे बांधना पड़ेगा। जैसे वो बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, फूटता जाएगा तो उसको बांधते ही जाना, एक तार लगाया फिर दूसरा तार और लगाएंगे।
1: अच्छा अच्छा, जब मोसाई बढ़ती जाए बांधते जाऊ।
0: हाँ।

0: ऐसा करता जाना है तो ताकि उसकी कोई दिक्कत नीचे गिरेगा नहीं, जमीन पे आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर बांध दांगा नहीं की तो वो बिगड़ जाए, नीचे आ जाएगा कि जमीन पे आ जाए आने के बाद, तो फिर वो बिगड़ जाता है। उसको फिर ऐसी बांधना पड़े कि वो एक गांठ अलग से आती वो उसको, ताकि पौधा के ऊपर फिर कोई दबाव न डले।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: हाँ, उसको जोर नहीं आना चाहिए कि जाके मेरे को बांधा हुआ है यूं।
1: हाँ।
0: खेला तभी भी वो खेलना चाहिए, इस हिसाब से गांठन लगा के फिर वो तार पे बांधना पड़ता है।
1: अच्छा, ऊपर लटका बोबड़ है। बांधवा था कि तो बड़ा फायदा है तत्व प्रकाश जी ने पौधों ने।
0: फायदे तो काफी है यार, छिड़कानी पड़ती है, कोई बीमारी आ जाए तो तुरंत तो फोटो खींच के डायरेक्ट फोटो खींच के दवाई आ जाती है।
1: कितना कितना पौधे लगा रही तुम्हें?
0: मैंने पौधे लगाए तीन।
1: तो काफी मेहनत, संघर्षशील आदमी हो यार आप तो, बहुत मेहनत करी जा थका हो प्रकाश जी ने पासा। तुम सब्जी तो बाजार में मार्केट में लियो।
0: हाँ, सब्जी मंडी में।
1: दवाई छिड़कते वक्त छोटी मोटी सावधानी रखनी पड़ी पासी?
0: सावधानी तो रखनी पड़ती है, घूमना रहता अंदर अंदर रहना पड़ता है। अगर खेती करे तो यार अंदर अपन बार बार घूमते रहे, अपन एक दिन खेती करें और आठ दस दिन के बाद जाते तो फिर मजा नहीं।
1: सही बात है भाई,
0: क्या कमी है क्या नहीं कमी, यूँ हर रोज उसमें रहना पड़ता है सब, क्या करें, कृष्ण लोग है, खेती तो करना पड़े।
1: खेती तो देखो, बाप दादा भी खेती ऊपर निर्भर था, अपन भी खेती करनी जरूरी है। भारत देश में किसान नो एक बड़ो महत्व है, किसान उच्च स्थान है, कितना भी पैसा है लेकिन अन्न खादा वनो। प्रकाश जी अच्छी बात है यार, आप अमन मिले बे बात बताड़ी इन लीजिए, आपने बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम। राम राम।
2: वाह भाई, किसान भाई देखो प्रकाश जी ने बात होनी ना, अभी आप बात कर अब पशुओं की अपने लाभ है बारे में बात करें। देखो किसान भाई, पशु खेती एक बीजा मिली जुले है, जी खेती में अपना जी अनाज है ये अपने मानवी काम में लागे, जी सारा वगैरह है तो या पशु ने ले दे काम में लागे। भाई मन लो जुलो है, पशु अपने रखो जरूरी, क्योंकि पशु थकी घना लाभ है किसान भाई। देखो अपने घरेलू खाद्य पदार्थ है, घी है, दूध है, दही है, खट्टी छाछ है, पशु थकी आ गोबर भी अपन प्राप्त करें, नहीं थकी अपने जैविक खाद आ जी वर्मी कंपोस्ट है जी खाद अपना बना ही सक, तो इन्हें थकी अपने अच्छे अनाज भी थाएगा, पौष्टिक अनाज थाएगा, जी अपनी भूमि है जमीन है ये भी खराब नहीं थाएगा, बंजर होने के यार कई अंधाधुन अपना रासायनिक कीटनाशक है, रासायनिक खाद है, नहीं था कि अपनी जमीन है बंजर थती जाए बस। इतने अपने बजाने पशु रखवा था कि अपना जैविक खाद भी बना ही सक, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो इन्हें घना फायदा है भाई यार पशु थकी अपने। इतने किसान भाई पशु ने राखव जरूरी है भाई, आना समय में देखो आप सोमासा दड़ो खास कर पशु ने अपने मच्छर थकी बसाब जरूरी है भाई, ने अपने हवादार स्थान पर बांधव पशु ने खुला स्थान पर बांधेगा तो अच्छा रहेगा। मैं अनुम हूं कि अपने पानी भी अपने साफ पावो किसान भाई, अपने दाड़ा में एक वक्त हलावो है ताकि शरीर पर कई प्रकार की मिट्टी है या कोई गंगोड़ा जुड़े हैं तो ये भी अपने साफ थी जाए। पशु ने हाड़ांबार पशु ने खास कर समतल जमीन पर बांधवो, अपने समतल जमीन हो तो ये अच्छी तरह थकी बही सके। हाँ, मैं गाभिन पशु किसान भाई तो इन्हें भी अपने देखभाल जरूर रखो है, गाभिन पशु ने अपना जी पशु है बीजे इन्हें थकी अलग बांधव है ताकि ये सही तरीका से कि इन्हें व्यवस्थित बह सके, क्योंकि कोई एक बीजा ने पशु आपस में लड़ा जी तो जी गाभिन पशु इन्हें नुकसान सही सके।

वाह भाई किशन भाई, देखो हजना टाइम में एक बढ़िया सु गीत होने दो। मैं अपने बातें साली रीति किशन भाई खेती बाड़ी नहीं देखो किशन भाई भैया मानसून नी कमी थकी, आजकल गर्मी भी बड़ी भी थकी है, तो आप खेती बाड़ी में काम कर तो अपने सुबह टाइम या हवारन टाइम में अपन खेतीबाड़ी में काम निपट हुआ है, क्योंकि या गर्मी टाइम में अपन कहीं खेती नु काम करो तो अपने शरीर ने नुकसान थी सके। इतले किसान भाई केवत में कीधु है कि भाई पहलू सुख निरोगी काया, अपन सही हाँ तो सा खेतीबाड़ी नु काम है सही समय पर करी सका। इतले अपने शरीर में भाई दोपहर ने टाइम में गर्मी में अपन जो खेतीबाड़ी में काम करी ने गिरे आवी जाए तो तरत अपन पानी नहीं पी लेव है, जरा 20-30 मिनट अपन अच्छी आराम करवी है पसे अपन पानी पीव, क्योंकि आप गर्मी में अपन काम करी अपन पानी पी जा तो इन्हें थकी अपने बीमार थी जाए किसान भाई। एट्ले बात खूब ध्यान रखू है भाई, आजकल आ मच्छर मक्की थकी भी अपने बसवो है, क्योंकि आ मच्छर मक्की बीमारी आने थकी वधारे फैले पासी, मच्छर काटवा थकी तो कई मोटी बीमारी थी भाई, आ मलेरिया है डेंगू है ये बीमारी थी तो अपने आ मच्छर जाली उपयोग करवो है या पंखा उपयोग करवो है ताकि अपना मच्छर थकी बसी सके किसान भाई, क्योंकि किसान भाई आजकल आपने छोटी मोटी वातन ध्यान नहीं रख तो मोरे जाते अपने बहुत मोटी समस्या आ सके है। एटले किसान भाई आना समय अपने खान पान ने भी ध्यान रखू है भाई, क्योंकि कई अपने मीठी चीज वधारे नहीं खावी है आजकल, क्योंकि आ मीठी चीज खावा थकी आप शरीर में कई बीमारी पैदा थी। एटले किसान भाई आने छोटी मोटी बातों अपने ध्यान जरूर रखू है, किसान भाई बातें करवाने भी घनी इच्छा है पर आ सौरा टाइम पास पूरा थत रही है, एटले आप आज ते सूटा पड़ा ने काले नवी जानकारी लई ने सौरा पर फिर मांगा। आज नानू भाई ने आलो आज्ञा ये आवजू राम राम।

किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल FM 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की
1: यात्री
2: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: रहता है ना,
1: जो सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम री वाट उड़ीकता सगड़ा किसान साथियां ने अभिलाषा पारी की उर्सू ने भरी राम राम सा। और नरपत भाई आपने भी मारी उर्सू बने खनी राम राम सा।
5: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम, और साथ ही अभिलाषा बहन आपने भी राम राम।
1: राम राम सा, राम राम। देखो नरपत भाई, अपना जो किसान भाई है खेत में बहुत मेहनत करे छे, काम करे छे, साल भर मेहनत कर वे अपनी फसलों ने उगाओ छे। देखो कदे रबी की उगावे, कदे खरीफ की उगावे, तो यह फसलों में ही हेर फेर करता करता वे अपनी खेती बाड़ी में उन्नत बनाओ छे। पर वो सबसे महत्वपूर्ण समय तब आओ छे अपनी फसल बाजार भेजवा में देर छे तो वे उनको उचित भंडारण करे छे। तो भंडारण भी अपना किसान साथी करे छे, तो भंडारण के समय हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखने चाहिए, जैसे वाकई मेहनत खराब ना हो जावे। जब आप देखा कि जब वे अपनी फसल ने भंडारित करवा की सोच रहे छे, तो सबसे पहले यू जांच लेना जरूरी छे कि अपनी फसल में जो नमी की मात्रा छे वह भंडारण करवा के लायक छे या नहीं छे। या जांच लेना चाहिए कि अपने दाणों में 10-12% तक ही नमी की मात्रा होनी चाहिए। के पाछे दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हो गई वह हो बोरिया में भरे हुए अपना अनाज ने भंडारित करे छे। तो सर यह बहुत ही जरूरी चीज छे कि यदि नई बोरिया काम में ले रहा है तो कोई दिक्कत को नहीं, पर जब पुरानी बोरिया ने भी काम में ले रहा है तो कोई भी कीटनाशक सेवा ने उपचारित कर धूप में अच्छी तरह सुखार उनके पाछे ही जांच ले कि बोरिया निका तरी सूख गई या नहीं, वहां में नमी न हो वे गीली न हो। पूरी तरीके से सूखवा के पाछे ही वहां में अपना अनाज ने भंडारित करना चाहिए।
5: बिल्कुल चौकी बात बताई कि बारी टाइम अपने खरीफ की फसल भंडारण की भी आवश्यकता है, तो आप जो भंडारण करा की स्थल जो आप रखा था बिकी साफ सफाई को भी ध्यान रखा कि जंडा आप भंडारण करे जहाँ कमरा में अपने गोदाम या अपने कोठियार में अनाज रख रहे था आप अच्छी तरह पहले साफ करना चाहिए। और जिम अभी पुराना अनाज पड़े थे भी अनाज ने भी बाहर निकालने और साफ सुथरों करना चाहिए, या कचरो धूल पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, या दीवार या फर्श से या छत की दरारा में जब भी बंद कर जाए। और जो भंडारण से बिना आप सूखो साफ सुथरा रखा हवादार भी रखना, जिसके लिए आपने जो बरसात को पानी या सीलन या नमी जो बात बताया वह अपने भंडारण व्यवस्था की जगह नहीं पहुंचली तो अपना अनाज सुरक्षित रहे लो
1: जी। और देखो भंडारित करवा से पहले आपने जो भंडार गृह है निका खिड़की दरवाजा ने पूरी तरीका से खोल देना चाहिए, कुछ घंटा के ताने बाने खुल्लो ही रहना देना चाहिए जिसे शुद्ध ताजी हवा माए न आवे, बाद माए की जो सीलन है वह खत्म हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपना अनाज ने सीधा जमीन का संपर्क में न भंडारित करा, बढ़िया सा अपने लकड़ी की या फिर अपना कातड़ा लगा एक ऊंचो तख्तों से बना भी के माले अपना अनाज ने भंडारित करा। और यह भी देख ले वहां की अपनी जो दीवारा है वहां से अपने अनाज की बोरिया न छूरी हो, दीवार से भी थोड़ी सी उचित दूरी बना रखा। चूहा छे वहां का आबा जबा की जो जगह छे वी पे भी रोक लगावा, चूहा को भी विशेष ध्यान रखा। इनके साथ साथ जो दीमक हो गए वो भी भंडार गृह में अपन ने उनको भी ध्यान रखना है कि कट्ठे भी न लग पावे।
5: बिल्कुल सही बताया कि इस बार कीटा से सुरक्षा रखनी चाहिए, जो भंडारण जो अनाज भी जहाँ घुण होगो बिटल होगो पतंगा होगो या अपने भंडारण में जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसके लिए अपन कहें जो अनाज को भंडारण कर रहे चाहे तो बिना अच्छी तरह जांच लिया समय समय पर आप अनाज ने भी देखा कि जिन्हें कीट जाड़ा या बदबू दाना छेदक नहीं हो रहे थे या सारा लक्षण की जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि आप जो पूरा साल भर की जो मेहनत है वो आप भंडारण व्यवस्था में मतलब अपना अनाज इकट्ठो कर रहा था तो भंडार साफ सुथरा सही तरीका से कर रहा है तो अपन ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
1: और देखो सर घरेलू तरीका की जब आप बात करा तो सबसे पहले आपने जो नीम की पत्तियां हुए छे यदि आप ड्रम में भर जाए तो

0: एक परत आपा ने अनाज की राखनी है, बीके पाछे नीम या फिर लहसुन या फिर सूखी लाल मिर्चा हो चे, एक परत बाकी बिछा देवा, फिर एक परत आपा अपना अनाज की बिछावा। अहिया कर एक एक परत दोनों चीजा की बिछाता हुआ उसके पाछे अपना अनाज ने आपा भंडारित करा। और देखो सर, जो अपने चूनू हुए चे बीकी भी पोटली बना आपा अपना अनाज के माये रख सका छा। और भी कई ऐसी दवा आवे कि जाने यदि काम मिले वा आपा तो अपने जो अनाज है वो सुरक्षित रह सके छे। तो सर देखो ये छोटी छोटी बात है, यानी यदि अपना किसान साथी ध्यान में रखे तो जो भंडारित अनाज हो छे वो अपने कदे भी खराब कौन मिले लो। तो देखो सर, बात हुई जानकारी की, अब कार्यक्रम में ले चलना थोड़ी सी और आगे और सुन लेना बढ़िया सो गीत
1: सुनाओ सा।

0: सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम फिट एंड फाइन। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉप रोड, टॉप फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
1: अब आप थोड़ी जानकारी की तरफ चला
2: तो
1: गुलाब जी चौधरी आगा जो अपन सुरक्षित खेती से सब्जियां की खेती में बेहतर कमाई के बारे में जानकारी देवला।
2: तो सुन ले बढ़िया सी जानकारी।
1: बिल्कुल
3: किसान साथियों, आज अपने बीच मौजूद हैं डॉक्टर गुलाब चौधरी, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान, और आपसे आज बातचीत कर से जानकारी ले सिया की प्रकार से सब्जियों की संरक्षित खेती करके आप बेहतर कमाई कर सका। तो आज बातचीत करा और जानकारी लेवा। तो डॉक्टर गुलाब चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
2: राम राम।
3: तो डॉक्टर गुलाब जी, देखो सब्जियों की जो संरक्षित खेती की आप बात

0: कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो वहां का किसान भाई ही माने यह बताओ कि जो संरक्षित खेती है या कहीं हुए है।
1: संरक्षित खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जहां फसलें ग्रीन हाउस, पोली हाउस या नेट हाउस जैसी सुरक्षात्मक संरचनाओं में उगाई जाती है ताकि उन्हें प्रतिकूल मौसम, कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। यह तापमान, आर्द्रता और प्रकाश जैसी विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों को नियंत्रित करने की सुविधा देती है जिससे साल भर खेती संभव होती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
0: जी, यह तो बात हुई कि संरक्षित खेती कहीं हो गए है, होगी जो संरक्षित खेती है एक ही आवश्यकता ही अपने क्यों है।
1: देखो बाद खाद्य और पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता पर भी अधिक जोर दिया गया है। जब पौधों की वृद्धि के लिए परिस्थितियों को उचित रूप से नियंत्रित किया जाता है तो इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में देश में लगभग 20.49 करोड़ टन सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जबकि बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण व घटती जमीन और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज 21.2 करोड़ टन सब्जियों के उत्पादन की जरूरत है। सब्जियों की संरक्षित खेती की आवश्यकता का एक बड़ा कारण यह भी है कि पानी की कमी या मौसम की बदलती शर्तों के कारण किसानों की मेहनत को कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपने राज्य में तापमान 5 से लेकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च स्तर तक रहता है। इसलिए खेती को लेकर एक धारणा है कि लागत के मुकाबले इसमें मुनाफा कम होता है। कई इलाकों में फसलों की कमी की खबरें आती रहती है, लेकिन इस समस्या का मूल कारण प्रबंधन या परंपरागत खेती है। कुछ अलग करने की सोच न केवल उत्पादन बढ़ा सकती है बल्कि कई गुना मुनाफे के रूप में भी हो सकती है। हालांकि इसे करने के लिए परंपरागत खेती से ज्यादा खर्च करना होगा, नई तकनीकों जैसे कि संरक्षित खेती को अपनाना जरूरी है। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, खीरा, ब्रोकली, फूलगोभी है आदि कई प्रकार की ऐसी सब्जियां हैं जो कीटों के प्रति, फफूंद जैसे जीवाणु है, विषाणु है, इनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। अगर इन पर नियंत्रण न किया जाए तो ये कीट और रोग फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं या नष्ट भी कर सकते हैं, जिससे उपज में भारी नुकसान और उपज की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। दूसरी ओर खरपतवार पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए सब्जियों की फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये फसल की पैदावार कम कर सकते हैं और जो कटाई है उसमें भी ये कठिनाई पैदा करते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आप या तो बताया कि भी जो संरक्षित खेती है आप वर्तमान की आवश्यकता है, पर लाभ की अगर बात करें तो किसान भाई के लिए संरक्षित खेती का कई लाभ
1: है। देखो संरक्षित खेती के लाभ ही लाभ है। संरक्षित खेती में नियंत्रित वातावरण के तहत मूल्यवान फसलों की खेती की जाती है। इस तकनीक का लाभ महंगा हो सकता है, लेकिन इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ग्रीन हाउस, नवीनतम तकनीक से लेस पोली हाउस, प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, शेड नेट हाउस में रोशनी आदि ही अंदर आती है, जो गर्मी और ठंड के मौसम में फसलों के लिए उत्तम होती है। जबकि पोली हाउस सभी सीजन में फसलों के लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन है, पर्यावरणीय जो परिस्थितियां है वो पूरी तरीके से नियंत्रित रहती है। ग्रीन हाउस, पोली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स में सही जल का प्रबंधन अपन कर सकते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी अपन कर सकते हैं, उर्वरक जो है उसको भी अपन फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं और बहुत कम जगह में बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा मल्टी लेयर तकनीक जो बहुत ही शानदार तकनीक है, जैसे टमाटर और खीरे के नीचे अगर अपन गोभी वर्गीय सब्जियों को उगाकर परंपरागत तकनीक की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक उपज ले सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ही वह सब्जियों की खेती ये वास्ते कर रहे हैं कि सब्जी वहाँ के लिए एक जो है कि रोजाना आमदनी का साधन है कि सब्जियों की तुड़ाई करके और फिर बाजार में जाके बेच के वह एक लगातार आमदनी कर सके।
1: जी,
0: पर संरक्षित खेती की आप बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में किसान भाई कौन कौन सी सब्जियों को चयन कर सके हैं?
1: देखो संरक्षित खेती के लिए सब्जियों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। अपने को उन सब्जियों का चयन करना चाहिए जिनकी बाजार में नियमित मांग हो, खासकर ऑफ सीजन के दौरान, जैसे टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, बैंगन है और करेला है। ये उच्च मूल्य वाली सब्जियां होती है और इनके हाई रेट अपने को बाजार में पूरे साल भर मिलते रहते हैं। तो बेमौसम में जो सब्जियां अपन उगा सकते हैं जो मैंने अभी बताई, उन्हीं का अपने को चयन करना है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस और पोली हाउस में बेहतर इनका प्रदर्शन रहता है और इन सब्जियों में रोग और कीट लगने से बाहरी वातावरण में इसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए अगर अपन इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करते हैं तो काफी हद तक इस नुकसान से बच के और अपन बेहतर कमाई पा सकते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताया कि जो संरक्षित खेती है के माए अपने कौन कौन सी सब्जियों को चयन की प्रकार से करना चाहिए। संरक्षित खेती के माए यह भी बताओ कि कौन कौन सी संरचना हो रही है।
1: देखो संरक्षित खेती में बहुत सारी संरचनाएं होती है और अलग अलग किसान अलग अलग संरचना

में खेती करते हैं वो स्थान विशेष को लेकर भी अलग अलग संरचनाएं होती है, जलवायु की परिस्थितियों को लेकर भी अलग अलग संरचनाएं होती है। अगर मैं बात करूं तो जैसे पहला है वॉकिंग टनल, इसे छोटे किसानों का ग्रीन हाउस भी कहते हैं। ये मूलतः चाप के आकार की एक सरल संरचना होती है। 200 माइक्रोन की मोटाई वाली जो प्लास्टिक को आधे इंच के जीआई पाइप पर खड़ा किया जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 से 2.5 मीटर और चौड़ाई लगभग 4 मीटर होती है। इसमें शिमला मिर्च और खरबूजे जैसी जो कम ऊंचाई वाली सब्जियां हैं, जिनकी हाइट बहुत कम होती है, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इसका उपयोग नर्सरी में पौधे उगाने और रोपण सामग्री के अनुकूलन के लिए भी किया जा सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक होता है प्लास्टिक लो टनल, इसे पंक्ति कवर प्लास्टिक लो टनल भी कहते हैं। लो टनल का उपयोग खुले मैदान की स्थिति में पौधों को कवर करने के लिए किया जाता है, जहां 30 से 50 माइक्रोन की पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म 50 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मीटर चौड़ाई के फ्रेम पर फैली हुई होती है। दिन के समय प्रकाश प्राप्त करने और रात के समय में फसलों को ठंड से बचाने के लिए अधिकांशतः उपयोग में ली जाती है। ये कद्दू वर्गीय सब्जियां जो 2 मौसम में उगाई जाती है, एक होती है इनकी जायद सीजन, एक होती है इनकी खरीफ सीजन। जायद सीजन में फरवरी मार्च में किसान भाई है वो अपने खेतों में इन सब्जियों को लगाते हैं। जब ये बाजार में आती है तब इनकी मार्केट की प्राइस है वो कम रहती है, क्योंकि सभी किसान भाई उसी समय लगाते हैं। अगर अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के जैसे प्लास्टिक मल्च और इसके साथ साथ में लो टनल लेके अगर इसी सब्जी को अपन दिसंबर या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में लगाते हैं तो अपने को मार्च अप्रैल तक फ्रूटिंग अपनी होने लगती है और बाजार में अपने फ्रूट आने लगते हैं, जिससे बहुत ही शानदार अपने को अच्छी मार्केट प्राइस अपने को मिल सकती है। क्योंकि जब अपन भी देखते हैं, अगर प्रैक्टिकली अपन सोचते हैं, तो कोई भी सब्जी अगर पहली बार बाजार में आती है तो उसका रेट काफी अच्छा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेट हाउस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो छाया के लिए होता है, एक कीटों से बचाने के लिए होता है। जो छाया जाल होता है उसका जो उपयोग है वो अपन सूर्य की रोशनी सीधे मतलब अपनी फसलों पे ना पड़े, जिससे कि रोशनी से जो प्रकाश है उससे अगर कोई फसलें झुलसा रही है, मुरझा रही है, तो उस नुकसान से अपन बच सकते हैं। इनका रंग अलग अलग हो सकता है, जैसे काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। दूसरा जो जाल होता है वो कीट मेस वाले जो कीटरोधी जाल का उपयोग किया जाता है। 40 और उससे अधिक मेस वाले जाल अधिकांश कीटों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग नियंत्रित परागण विधि के लिए भी किया जाता है। नेट हाउस में बेन मौसम टमाटर की खेती भी इसमें की जा सकती है। टमाटर की नेट हाउस खेती से जनवरी के अंतिम सप्ताह से जून के पहले सप्ताह तक टमाटर की उपलब्धता की सकती है। इसके अलावा जो चौथा है वो है मल्चिंग। अधिकतर जो किसान भाई है वो मल्चिंग को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे के आधार के चारों ओर किसी भी आवरण सामग्री से मिट्टी की सतह को ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया नमी का संरक्षण करती है, खरपतवारों का नियंत्रण करती है, मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार करती है और जो जड़ क्षेत्र है उसमें गैसों का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें होता है। साथ ही यह फलों को मिट्टी के संपर्क से बचाता है, जिससे अपने जो फल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी अपने को प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अपन कभी कभी देखते हैं कि जो कद्दू वर्गीय जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है या फिर जो काकड़िया है, वो अपन फ्रूट बाजार से लेके आते हैं तो उसमें एक निशान बना हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो जो फल है वो जमीन के टच, मिट्टी के टच होते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी रिड्यूस होती है। इसके अलावा ये जो पीले रंग की और सिल्वर रंग की अगर अपन पॉलीथीन शीट काम में लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि सफेद मक्खी और जो एफिड्स है उससे अपन उसको दूर भगा सकते हैं, उनका नियंत्रण अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो काली प्लास्टिक मल्च होती है वो अपनी अपारदर्शिता के कारण बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा जो सफेद कलर की जो मल्च शीट होती है वो मतलब कि अच्छे प्रोडक्शन के लिए, प्रकाश के मतलब कि अच्छे प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। इसके अलावा एक ग्रीन हाउस होता है जिसको पॉली हाउस भी अपन बोल सकते हैं। ये बहुत ही महंगा थोड़ा होता है, इसलिए हर एक किसान भाई इसको अडॉप्ट करने से पहले सोचता है। ये एक आच्छादित संरचना या ढांचा होती है। ये पारदर्शी या पारभाषी पदार्थ से ढका होता है। इसमें फसलें आंशिक या पूर्णतः नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगाई जाती है, इसीलिए इसमें पूरे साल भर अपन खेती कर सकते हैं। पौधों की इसमें बेहतर वृद्धि होती है, उपज के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। ग्रीन हाउस इतने बड़े होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसमें आसानी से जा सकता है, आ सकता है। जो भी कृषि क्रियाएं हैं वो उसमें वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और भी होता है, जैसे मिट्टी की खाइया। ये मतलब कि अत्यधिक सर्दियों की स्थिति के दौरान सब्जियां उगाने के लिए सबसे सस्ता ढांचा मतलब मिट्टी की खाइया खोदकर बनाया जा सकता है। इन्हें भूमिगत सौर ग्रीन

0: हाउस भी कहा जाता है। आमतौर पर इनकी चौड़ाई 5 से 6 मीटर और गहराई लगभग 2 से 3 मीटर होती है। इष्टतम तापमान बनाए रखने के लिए सूर्य और मिट्टी दोनों की गर्मी का उपयोग किया जाता है। यह ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा जो लास्ट वो है होटवेड। ये होटवेड गोबर के अपघटन से उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसका उपयोग शून्य से नीचे के तापमान में भी सब्जियां उगाने में किया जा सकता है। इन्हें जमीन पर भूसे और आधे सड़े हुए गोबर की परतों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। ये बेमौसम नर्सरी उगाने के लिए भी उपयुक्त है।
1: जी डॉक्टर साहब, जो संरक्षित खेती है वर्तमान की आवश्यकता है और कई लाभ भी नहीं का, पर आप बात कर लें चुनौती की, तो संरक्षित खेती के माए किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी प्रमुख चुनौती है?
0: देखो, संरक्षित खेती में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन मुख्य चुनौती ये है कि इसमें जो शुरुआती जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है और किसान भाई इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जागरूकता है उसकी काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जैसे कि बस्सी है उसको मिनी इसराइल के नाम से जानने लगे हैं, लेकिन वहां पे एक किसान गया और वो इसराइल में मतलब पोली हाउस देख के आए और वो आके लगाए, उसको प्रॉफिट हुआ तो बाकी सभी किसान भाइयों ने अडॉप्ट किया। लेकिन बहुत सी अपने राज्य में ऐसी जगह हैं जहां पे एक भी पोली हाउस नहीं है या फिर ना के बराबर पोली हाउस है, तो किसान भाई की आदत होती है कि वो देख के ही अडॉप्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो जागरूकता की कमी होने के कारण वो नहीं बना पाते हैं और बहुत सारी संरचनाओं के बारे में उनको जानकारी ही नहीं होती है इस संरचना को अपना के अपन इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यह भी है कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, लेकिन किसान भाइयों का इसको नॉलेज नहीं होता है कि इस सब्सिडी का फायदा कैसे ले सकते हैं और कौन सी संरचना पे कितनी सब्सिडी है। किसान भाइयों को मतलब सब्सिडी जो आदान है उसके बारे में पूरी जागरूकता होनी चाहिए, कि अवेयर होने चाहिए वो कि कौन सी संरचना पे कितनी सब्सिडी मिलती है और क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो संरक्षित खेती की आप बात कर रहे हैं, तो किसान भाई के लिए जो सरकार है वह संरक्षित खेती के लिए कई प्रयास कर रही है?
0: देखो, संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए जो अपनी राज्य सरकार है वो जो संरचनाएं हैं उस पर अलग अलग संरचना पे अलग अलग सब्सिडी दे रहे हैं। अगर बात करें ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस की, तो इस पे निर्माण हेतु निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा इस एम्पलन फर्म्स की प्रस्तुत दरों में जो भी कम हो 50% अनुदान दे हैं। इसके अलावा जो लघु सीमांत होते हैं स्मॉल मार्जिनल या फिर अनुसूचित SC और ST के जो कृषक होते हैं उसको 20% अधिक अनुदान दे हैं। बात करते हैं अगर अपन प्लास्टिक मल्च की, तो प्लास्टिक मल्च पे अधिकतम 1 हेक्टेयर के लिए 20,000 या फिर जो भी लागत है उसका 50% जो भी कम हो वो सरकार मतलब किसान भाइयों को देती है और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए वो मल्च के ऊपर सब्सिडी देती है। बात करें प्लास्टिक टनल की, तो प्लास्टिक टनल के लिए विभाग द्वारा प्लास्टिक टनल पर अनुमानित लागत का 80 रूपये प्रति वर्ग मीटर या फिर अनुबंधित फर्म की दर दोनों में से जो भी कम हो उसका 50% देती है। इसके अलावा जो एंटी बर्ड नेट होता है उसके लिए भी 50% का सब्सिडी देती है। और इसके अलावा संरक्षित खेती में जो फसलें अपन लगाते हैं जो प्लांटिंग मटेरियल होता है गवर्नमेंट उसके ऊपर भी सब्सिडी देती है। तो किसान भाइयों का इस सब्सिडी का अधिक से अधिक फायदा लेना है और मैं निवेदन करूंगी सभी किसान भाइयों से कि संरक्षित खेती अपना के वो ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव है जिनको अपनाकर अपन अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत सारे किसानों के लिए अपन मोटिवेटर बन सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया जानकारी साहब। तो देखो किसान भैया, संरक्षित खेती कहीं हो है कहीं का फायदा ही क्यों आवश्यक है और की प्रकार से आप कर सका, इस विषय पर बहुत चौकी जानकारी दिया डॉक्टर गुलाब चौधरी, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान से वहां पाया और अति चौकी जानकारी किसान भाई ने दी। इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
2: हाँ तो नरपत भाई, देखो आप जानकारी तो सुन लिया, महेश भाई भी इतनी बढ़िया जानकारी दिला दिया। तो देखो सर, जानकारी देवा के तानी और जानकारी दिलावा के तानी, धन्यवाद आप दोनों ने और धन्यवाद स्वरूप सुनवा देवा एक बढ़िया सो गीत
3: सुनाओ सर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और अब आनंदीजिए फिल्म संगीत का।

0: श्रोताओं कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना, फिल्म जोधा अकबर से बेला शिंदे की आवाज में। गाने के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्रा
2: इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: मेरी वाईफाई है ना।
3: मुझू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। अगला गाना सुनिए, फिल्म है मिलन, मुकेश की आवाज में सुनिएगा। आनंद बख्शी के लिखे गाने की बोल है, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मिलन से प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चरित से। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म है कोरा कागज, कलाकार है किशोर कुमार, गाने के बोल लिखे एम जी हसमत ने, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। सुनते जाइए फिल्म संगीत।

कोरा कागज फिल्म का ये प्यारा सा गीत आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में। गाने के बोल लिखे एमजी हसमत ने, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं अभी कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर जनत से। अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है कटी पतंग, मुकेश के स्वर में सुनिएगा। गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया आरडी वर्मन ने।

छोटी पतंग, मुनि का ये प्यारा सा सॉन्ग आपने सुना मुकेश के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे गाने के बोल थे, संगीत था आरजी बर्मन का। श्रोताओ अगला गीत सुनिएगा, फिल्म है आनंद, मुकेश के स्वर में सुनिए। गीत निर्देशन है योगेश का, संगीत वध किया सलील चौधरी ने।

आनंद फिल्म से ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुकेश के स्वर में। गाने के बोल लिखे योगेश ने, संगीत था सलील चौधरी का। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला अंतिम गाना सुनिए, फिल्म है रजिया सुल्तान, कलाकार कब्बन मिर्जा, गीत निर्देशन जन्नसार अख्तर का, संगीतबद्ध किया खय्याम ने।

रजिया सुल्तान फिल्म का यह गीत आपने सुना कब्बन मिर्जा के स्वर में। गाने के बोल लिखे चन्नीसार अख्तर ने, संगीता खयाम का। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैन से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को है और आपसे बस थोड़ी देर में सुनिए पहले स्पोर्ट्स गेम, फिर 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, 9 का समय रहेगा न्यूज 8:09 का और 9:15 पर सुनिए उर्दू में समाचार।

0: हूँ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ है मेरे को होस्ट धर्मेंद्र मणि राजेश। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
1: सिद्धार्थ, एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम घटना पर है हमारे एक नजर हेडलाइंस पर।
0: जी हाँ, नजर डालते हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों के आठवें दिन आज भारत ने 4 रजत सहित 7 पदक जीते।

0: जीत का पुरुष टीम को रजत और महिला टीम को कांस्य पदक मिला।
1: और क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य।
0: और श्रोताओं, खेल खबरों की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां आज का दिन भारत के नाम रहा। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीता।
2: एशियाई खेलों में आज एनसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने कहा कि मुकाबला बेहद कठिन था, लेकिन देश के लिए रजत पदक जीत कर भी खुश हूँ। वे महज 2 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक से चूक गई। सर्वेश कुशारी ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। उन्होंने 2.25 मीटर की जंप के साथ ये मेडल हासिल किया। वहीं महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में पारुल चौधरी को कांस्य पदक मिला। उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए 9:08.67 में रेस पूरी की। पुरुष डिकैथलन स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता की अंतिम स्पर्धा में 1500 मीटर दौड़ में जीत दर्ज करके ये पदक हासिल किया। उधर हरिता बद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हरिता ने 23.20 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हरिता ने अपने इस पदक के लिए कोच और परिवार का धन्यवाद दिया। भारत ने इस स्पर्धा में पिछली बार 2018 एशियन गेम्स में दूती चंद के कांस्य पदक के रूप में पदक जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स चैनल।
0: धर्मेंद्र, आप पूरे इवेंट पर नजर बनाए हुए थे एथलेटिक्स में, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉन्ग जंप स्पर्धा से, जहां पर जिस तरीके से आज एनसी सोजन ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे?
1: कमाल का प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन की जितनी भी तारीफ की जैसे दर्द बेहद कम है। 5
0: जी
1: जब वो जंप वो लगा चुकी थी, तब वो लगातार आगे बनी हुई थी और लग रहा था कि गोल्ड मेडल हमारा पक्का हो चुका है, लेकिन वो छठा जंप जहां पर चीनी खिलाड़ी ने अपना सब कुछ झोंक दिया और सिर्फ 2 सेंटीमीटर के अंतर से वो स्वर्ण पदक हमारे हाथ से छीन लिया। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ब्रॉन्ज मेडल पर भी हमारी तगड़ी दावेदारी थी, वहां पर भी चीनी खिलाड़ी अंतिम छलांग में हमारी खिलाड़ी से आगे निकल गई।
0: जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो हम एकदम क्लोज थे गोल्ड की, और वो मायूसी, हालांकि रजत पदक मिला हमें, हमें खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर इतना कम था, वो मायूसी हमने आपके चेहरे पर देखी। और जिस समय लाइव मैच चल रहा था, हम सभी का ध्यान उस पर लगा हुआ था, और ये लग रहा था कि आज कम से कम भारत एक गोल्ड तो जीतेगा ही।
1: जी बिल्कुल, उस समय तो ना उम्मीदी की कोई बात थी ही नहीं। 6 जंप में से 5 जंप में आप लगातार आगे बने हुए हैं और इतना लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का फासला 5वें जंप तक था भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में, लेकिन वो अंतिम जंप बहुत कमाल का चीन की खिलाड़ी ने भी लगाया। लेकिन जो भी हो, प्रदर्शन जो एनसी सोजन ने किया है वो कमाल का प्रदर्शन किया है, और बहुत सारी उम्मीदें इस जंप के बाद हमें जगती हैं, और अब तो ओलंपिक की भी उम्मीद हमें मेडल की दिख रही
0: है। बिल्कुल, और जैसा कि उन्होंने अपने जीतने के बाद भी एनसी सोजन ने कहा था कि मुकाबला बेहद कठिन था, लेकिन देश के लिए रजत पदक जीतकर मैं बहुत खुश हूं। और इसके बाद धर्मेंद्र, नजर डालते हैं सर्वेश कुशारी के प्रदर्शन पर, जिन्होंने 2.25 मीटर की जंप के साथ जो मेडल हासिल किया, इनका भी प्रदर्शन काफी बेहतरीन था।
1: अरे, ये तो गोल्ड मेडल के ही दावेदार थे, ये सिर्फ कह सकते हैं कि लक की वजह से गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। जो वो जंप था 2.25 मीटर का, इनके जो कंपटीटर थे उन्होंने भी उतना ही जंप लगाया और गोल्ड मेडल जीता। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पहली बार में ही वो डिस्टेंस क्लियर कर लिया था, और सर्वेश कुशारे जो है वो दूसरी बार में वो हाइट क्लियर कर सके, इसकी वजह से गोल्ड मेडल से चूक गए।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही यहाँ पर बात करनी होगी पारुल चौधरी की, जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में उन्होंने आज कांस्य पदक देश को दिलाया।
1: जी, पारुल चौधरी ने भी कमाल की दौड़ लगाई। लगातार वो जो 3 खिलाड़ी थी एक लाइन में बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी वो रेस जीत सकता है। हालांकि अंत में पारुल चौधरी थोड़ा सा सुस्त हुई और

0: और वो गोल्ड से चूक गए, कांस्य पदक पर जरूर उन्होंने कब्जा किया
1: जी। और डेकाथलॉन में भी जिस तरह का तेजस्वी शंकर ने आज प्रदर्शन किया है वो भी काबिले तारीफ।
0: तेजस्वी शंकर की अगर हम बात करें तो कल तक का उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन था, नंबर वन चल रहे थे। आज जो इवेंट्स उन्होंने किए उनमें वो उस तरह का प्रदर्शन कंटिन्यू नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल पर फिसल गया। अन्यथा कल तक ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ण पदक एक और भारत को दिलाएंगे।
1: बिल्कुल। और हरिता भद्दर ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, जिस तरह से 200 मीटर दौड़ में जो उन्होंने 23.20 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पदक देश के नाम किया, उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा।
0: बहुत तारीफ के काबिल है। आपने बताया भी कि दूती चंद के बाद उन्होंने एक मेडल दिलाया है भारत को। 200 मीटर की दौड़ इतनी आसान होती नहीं और ये हमारा पारंपरिक इवेंट रहा भी नहीं है, तो हरिता भद्रा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है बहुत सारी उम्मीदें वो भी जगा कर गई हैं।
1: एशियाई खेल में आज पुरुष और महिला सिंगल्स स्क्वैश के फाइनल में अनहस सिंह और अभय सिंह ने रजत पदक हासिल किया। ये सुनते हैं की रिपोर्ट।
2: वर्षीय अनाहत सिंह स्क्वाश में भारत की पहली वुमेन सिंगल सिल्वर मेडलिस्ट बन गई है।
3: आई एम क्वाइट हैप्पी विद द सिल्वर मेडल एंड माय सेकंड टाइम प्लेइंग द इंडिविजुअल्स एंड आई एम जस्ट गेटिंग टू लर्न फ्रॉम दिस एंड बी एट द स्टेज इज समथिंग दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरी एथलीट एंड आल्सो गेटिंग अ मेडल ऑन टॉप ऑफ दैट इज समथिंग आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट।
2: हालांकि अनाहत को फाइनल में मलेशिया की मौजूदा चैंपियन शिव संगरी सुब्रमण्यम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ अनाहत ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने का पहला मौका भी चूक गई, क्योंकि सिंगल्स इवेंट के विजेता को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए कोटा मिलना तय था, जहां स्क्वॉश पहली बार शामिल हो रहा है। इससे पहले अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स का रजत पदक देश के नाम किया।
4: Quite disappointed. I wanted to go all the way, but sport doesn't work that way. So I think I played pretty well in the first. I think we were quite toe to toe. But I think he started playing better squash in the second. He found the ball. He put the ball in very good areas. Very clean squash. Moved well. Like I said, all credit to him. I think he was a better athlete today.
2: फाइनल मुकाबले में अभय सिंह को मलेशिया के मौजूदा चैंपियन एनियो एनजी ने मात दी। ये स्क्वॉश में भारत का दूसरा पदक रहा। अभय सौरव घोषाल के बाद इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। अनाहत सिंह और अभय सिंह की ऐतिहासिक जीत ने देश को गौरवान्वित किया है। जया भारती,

0: एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुड्डा ने क्वार्टर फाइनल जीतकर भारत के लिए दो और पदक पक्के कर दिए हैं। अंकुश ने पुरुष 80 किलोग्राम में ताजिकिस्तान के निक्रूज सलीमोव और परवीन ने महिला 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की नवाबहोर खामिदोवा को 5-0 से हराया, लेकिन सचिन सिवाच पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गए।
1: और सिद्धार्थ, आपको तो पता है कि तीरंदाजी हमारा पारंपरिक खेल रहा है, हमारे धनुर्धर महाभारत काल से ही कमाल करते रहे हैं और आज भी तीरंदाजी में भारत की पुरुष शिखर टीम ने और पूरी टीम की अगर बात करें तो कमाल का प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में पुरुष टीम ने चीन को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। महिला टीम ने चीनी ताइपे को 6-0 से हराया। इसके साथ ही भारत की पुरुष, महिला और मिक्स रिकर्व टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये मुकाबले 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे। कल से कंपाउंड के व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होंगे और वहां भी हमें बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।
0: आगे बढ़ते हैं। भारत के संतोष कुमार तमिलारासन ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स की हीट में 49.61 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यशस पाराक्षा दूसरी हीट में चोटिल हो गए और वे रेस पूरी नहीं कर सके।
1: और भारत के संतोष कुमार तमिलारासन ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स की हीट में 49.61 सेकंड का समय लेकर, जो आपने बताया कि दूसरा स्थान हासिल किया। उधर महिलाओं की मैराथन रेस वॉक में भारत की मंजूरा ने 3 घंटे 40 मिनट 1.07 सेकंड के समय के साथ छठे और आखिरी स्थान पर रही। प्रियंका गोस्वामी करीब 9 किलोमीटर के बाद डिस्क्वालीफाई हो गई थी।
0: बिल्कुल, अब सबकी नजर हॉकी पर रहती है तो बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सुनलिता टोपो के 2 गोल की मदद से अपने अंतिम पूल बी मैच में सिंगापुर को 7-0 से हराया। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है जहां 3 सितंबर को उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा।
1: पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी मुकाबले में भारत ने वियतनाम को 3-0 से हराया। भारत ने

0: 25-23, 25-21, 25-20 से जीता, भारत अब कल हांगकांग के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगा।
1: वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग में 9वें नंबर पर रही, उन्होंने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया।
0: बैडमिंटन में भारत का सफर समाप्त हो गया, पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यूफेई से हार गई, उन्नति हुडा क्वार्टर फाइनल में चीन की अकाने यामागुची से पराजित हो गई, मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तनिषा कास्टो और ध्रुव कपिला को चीन की जोड़ी ने पराजित किया, महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में गायत्री गोपीचंद त्रिशा जोली को मलेशिया की जोड़ी ने हराया, बैडमिंटन में इस बार भारत को सिर्फ पुरुष टीम इवेंट में कांस्य पदक मिला।
1: शूटिंग की बात करें तो महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन के प्रिसीजन स्टेज में भारत की ईशा सिंह ने 290 अंक हासिल किए, मनु भाकर और राही सरूनबत ने भी 287-287 अंक लिए। इस इवेंट में अभी किसी की स्थिति फिलहाल तय नहीं हुई है और इवेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल समय कुछ कम है।
0: लेकिन हम तो बात करेंगे रैपिड स्टेज कल से खेला जाएगा, फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय निशानेबाजों को रैपिड स्टेज में बेहतर स्कोर करना होगा। और पुरुष वर्ग में काइनम चेन्नई 47 अंक के साथ 11वें स्थान पर है, शपथ भारद्वाज 45 अंक के साथ 22वें और अहवर रिजवी 41 अंक के साथ 35वें स्थान पर है। घुड़सवारी के डिसाज इंडिविजुअल फाइनल में हृदय छेड़ा 8वीं और जयसूर 9वें स्थान पर रहे।
1: समरकंद में भारतीय पुरुष टीम ने 46वें शतरंज ओलंपियाड के अंतिम दौर में रविवार को हंगरी के साथ ड्रॉ खेलकर यानी आज ट्राई ब्रेकर में रजत पदक हासिल किया। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ बाजी बराबर रहने के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: ओपन सेक्शन में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और भारत को रजत पदक और जर्मनी को कांस्य पदक मिलेगा। महिलाओं के सेक्शन में चाइना को स्वर्ण पदक और रजत पदक कजाकिस्तान का होगा, जिनकी टीम काफी अच्छी है, बीबी सारा उनके खिलाड़ी है, और भारत की महिलाओं को कांस्य पदक मिलेगा। अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं तो सविता श्री को स्वर्ण पदक मिलेगा। आज का जो गेम था वो काफी मुश्किल पोजीशन में थी, अगर वो हार जाती तो भारत को तृतीय स्थान नहीं मिलता, फिर वो यूएसए को मिल जाता और भारत चौथे स्थान पर आ जाता, लेकिन सविता श्री ने बहुत ही अच्छी एक टक्कर दी तो सविता श्री को इंडिविजुअल गोल्ड मिलेगा। तो वर्ल्ड चैंपियन गुकेश जो आज अनफॉर्चुनेटली हार गए तो उन्हें सिल्वर मिलेगा। दिव्या देशमुख वो भी आज पराजित हो गई, उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। ऑल टाइम ग्रेट कोनेर होम्पी को ब्रॉन्ज मिल रहा है, वंतिका अग्रवाल को ब्रॉन्ज मिल रहा है और प्रज्ञानंद को ब्रॉन्ज मिल रहा है। तो हमें 6 इंडिविजुअल मेडल्स मिल रहे हैं और कहीं इसका रिफ्लेक्शन हमें अपने टीम के सक्सेस में दिखाई दे रहा है।
1: जहां भारतीय टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में बता रहे थे, शतरंज ग्रैंड मास्टर नान प्राप्त करने वाले राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी प्रवीर थिपसे।
0: और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं।
1: और श्रोताओं घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब आपसे विदा लिया जाए, कल स्पोर्ट्स कैंप में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैंप की ईमेल sportscan.ear@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का

0: महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रूपये से बढ़कर

0: 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और विभिन्न प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा चिन्हित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण। 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन उनके जीवन का सत्व, का तप, उनकी शांति और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
4: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में

0: कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
1: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
0: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
2: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको फिफ्थ टाइम मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के लिए।
0: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षत वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.up.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.
6: एफएमएनएक्स 1.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 9 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: ये जो चिलमन है

जो सरकने लगा, रुख से पर्दा जरा जो

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों पर, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया।

0: बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सिलसिला फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल, संगीत है शिव हरि का।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसे दे एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्युलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है सुनैना फिल्म का गाना यशुदास की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है,

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवा रहे हैं। घर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा।

0: रहता रहना। लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक कर रहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: का शायर।
1: आप सोच रहे होंगे नमस्कार के साथ ही मैंने अर्ज किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये मामला क्या है? तो चलिए मामले को थोड़ा आगे और फलसफाई बना देते हैं।

0: भाई मामला क्या है आज के फनकार कार्यक्रम में? आज हम आखिर बात किस सिनेकार की कर रहे हैं? आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन जाने माने निर्माता निर्देशक यशराज चोपड़ा को।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां,

0: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।
1: यशराज चोपड़ा 27 सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा के पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे। परिवार में 8 भाई बहन थे। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने सिनेमा में ही सांस ली, सिनेमा में ही काम किया और सिनेमा के ही सपने देखे, और वो सपने भी बड़े रूमानी किस्म के सपने थे। तभी तो आगे चलकर यशराज चोपड़ा ने अपने सिनेमा का एक खास मुहावरा कढ़ा। जब ये पता चलता था कि यश चोपड़ा की नई फिल्म आ रही है, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मोहब्बत का कोई रंग लेकर आ रही होगी। यश चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि मोहब्बत सचमुच बड़े काम की चीज है, और ये नाम ही नाम की चीज नहीं बल्कि नाम और दाम की चीज है। तभी तो यश चोपड़ा ने सेल्यूलॉइड पर रूमानी सपनों को उतारा और कामयाबी की नई इबारत रची। लेकिन इसके लिए यश चोपड़ा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और यश चोपड़ा के बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा शुरुआती दौर में तो एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर फिल्म पत्रकारिता से फिल्मों में जा पहुंचा। वो

फिल्मों की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए। यश चोपड़ा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लग गया सिनेमा का चस्का और वो आ पहुंचे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में।

यश चोपड़ा, जाने माने कॉमेडियन और निर्माता निर्देशक इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आप आईएस जौहर के नाम से जानते हैं, उनके असिस्टेंट रहे। इसके बाद अपने बड़े भाई के सानिध्य में उन्होंने सीखा सिनेमा रचने का हुर। सन 1959 आ गया और यश चोपड़ा को मिली उनकी पहली फिल्म धूल का फूल। इसे यश चोपड़ा के बड़े भाई बीआर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार और लीला चिटनीस के अभिनय वाली इस फिल्म का बड़ी सूझबूझ से निर्देशन किया यश चोपड़ा ने।

0: बनेगा।
1: जैसे कि आप जानते हैं बी आर चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस बी आर फिल्म्स सामाजिक मुद्दों पर बनी अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जाहिर है कि शुरुआती दौर में बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया उनमें कोई न कोई सामाजिक मुद्दा था, कोई न कोई बात थी जिसका ताल्लुक समाज से था, समाज की धड़कती हुई नसों से था। सन 1961 में बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन में यश चोपड़ा ने डायरेक्शन किया फिल्म धर्मपुत्र का।
0: काबे में रहो या काशी में, हाँ।

साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना अपने आप जाहिर कर देता है कि फिल्म धर्मपुत्र का मुद्दा आखिर क्या था। फिल्म धर्मपुत्र को भारत सरकार ने हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये वो दौर था जब बीआर फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा एक के बाद एक कामयाब फिल्में बना रहे थे। सन 1965 यानी धर्मपुत्र के रिलीज होने के 4 साल बाद यश चोपड़ा लेकर आए अपनी एक अजीमुश्शान फिल्म, जिसके सितारे थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, मदनपुरी, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव और रहमान। ये फिल्म थी वक्त।

फिल्म वक्त को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। आप जितनी बार भी वक्त को देख लें, आपका मन नहीं भरता। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ किरदारों के खो जाने और उसके बाद नाटकीय तरीके से उनके मिलने की बेमिसाल कहानी थी वक्त। सन 1969 में बी.आर. चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने बनाई दो बेमिसाल फिल्में। एक थी आदमी और इंसान।

0: मेरे पास है।
1: दूसरी थी फिल्म इत्तेफाक। आपको बता दें कि फिल्म इत्तेफाक एक रात की कहानी थी। ये एक गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म थी जिसके मुख्य सितारे थे राजेश खन्ना। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने आलोचकों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक की कमाल की बात यह है कि इसकी शूटिंग सिर्फ एक महीने में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में ना तो कोई गाना था और ना ही इंटरवल था। हिंदी सिनेमा के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा और इस फिल्म के लिए भी यश चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। यहां से यश चोपड़ा के जीवन का एक नया युग शुरू होता है। सन 1971 यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन बीआर फिल्म्स को अलविदा कह दिया और अपना एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा गया यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स ने सबसे पहले बनाई फिल्म दाग। साल 1973 में आई राजेश खन्ना के अभिनय वाली ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और यशराज फिल्म्स की कामयाबी की कहानी यहां से शुरू हुई।

0: फिल्म दाग की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने अपने मजबूत कदमों के साथ फिल्म संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1975 रजत पट पर एक इतिहास लिखा गया। सलीम जावेद की लिखी, यश चोपड़ा की निर्देशित, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अभिनीत फिल्म आई दीवार।
1: लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
2: जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई।
1: रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ।
2: नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
1: तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे असूलों को गूंथ कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस पर पास से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
2: मेरे पास मां है।
0: दीवार बेहद कामयाब रही। अपनी बेमिसाल स्क्रिप्ट और कसे हुए निर्देशन की वजह से फिल्म दीवार आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा की बेमिसाल फिल्मों का सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि इसके अगले ही साल वो लेकर आए अपनी एक और लाजवाब फिल्म कभी कभी। ये यश चोपड़ा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। कभी कभी के 2 साल बाद ही उन्होंने गुलशन राय के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी ये फिल्म थी त्रिशूल।

0: यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ का सिलसिला जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला।
1: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

एक के बाद एक यश चोपड़ा ने लगातार कई कामयाब फिल्में दी। सन 1984 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर के अभिनय वाली फिल्म आई मशाल। इसके बाद यशराज फिल्म्स की कामयाबी का सफर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में कामयाब नहीं रहीं, जैसे फासले, विजय और परंपरा। सन 1989 में यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म चांदनी। ऐसा लगा जैसे पर्दे पर यश चोपड़ा का जादू अभी कई सालों तक कायम रहने वाला है। फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में एक विवादास्पद विषय पर यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म लम्हे। लम्हे को आलोचकों ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही जितनी यश चोपड़ा ने उम्मीद की थी। हालांकि फिल्म ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल था। सन 1993 में यश चोपड़ा ने बनाई शाहरुख खान, जूही चावला म्यूजिकल थ्रिलर डर। साल 1995 यशराज फिल्म्स के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय वाली ये फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म रिलीज हुई 20 अक्टूबर 1995 को और सारी दुनिया में दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया।

इसके बाद यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। सन 1997 में दिल तो पागल है के रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा तकरीबन 7-8 बरस तक फिल्मों से दूर रहे। हालांकि यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन यश चोपड़ा उनका निर्देशन नहीं कर रहे थे। साल 2004 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और लेकर आए फिल्म वीर जारा। सारी दुनिया में वीर जारा ने तकरीबन 940 मिलियन का कारोबार किया। एक बार फिर तकरीबन 8 बरस तक यश चोपड़ा ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यशराज फिल्म्स की बागडोर उनके पुत्र आदित्य चोपड़ा संभाल रहे थे। नए निर्देशकों को मौका दिया जा रहा था। प्रोडक्शन हाउस की कामयाबी जोरों पर थी। यश चोपड़ा अपने पुत्र के साथ यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2012 में अपने 80वें

0: जन्मदिन के मौके पर यश चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया जिसका नाम था जब तक है जान, और ये भी कहा कि ये उनके द्वारा निर्देशित की गई आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लेंगे। फिल्म जब तक है जान एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसी साल 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू की चपेट में आकर यश चोपड़ा का निधन हो गया।
1: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।
0: और इस तरह फिल्म संसार ने खो दिया अपने एक बेमिसाल निर्माता और निर्देशक को, जिसकी फिल्मों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने रजत पट पर रची मोहब्बत की एक नई परिभाषा, जज्बात की एक नई धड़कन। यश चोपड़ा को हमारा नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण के डेली हाईलाइट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जद्दोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुंचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वॉश में कहानी टू नियर येट टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं उदरपंती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एनसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एनसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजीशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और

0: एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो चौथे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर वन थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय बारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलिन भी शिरकत कर रही थी और उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिलासरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना स्नेहा सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। तीन पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमों को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापुंग सिकेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला आरएससी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरे।
0: Much like this, two medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final where he went down to Malaysia's Yan Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
2: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number one in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day two in second position, keeping themselves firmly in

0: season as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day one in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
1: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं, विदुषी बताती हैं।
0: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल धीरज नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपे 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट फोर। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal, and now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has 3 teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These 3 recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarterfinal. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These 3 compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन

0: में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गई।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी, और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग बुक हॉन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गोएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 ताजिकिस्तान्स निर्मा मादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ईयर ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वॉज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahere. So, four Indian Kurash athletes in action today and all four have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jefarlyn J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुभाव लेकर आलोक,
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेस इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जय सूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की, पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसू राउंड में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में, कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।

0: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
1: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
0: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। Then in the archery range, individual competitions will start. We will have our eyes on men and women from both recurve and compound archery. In athletics, Gulveer Singh and Yunus Shah will be fighting for a medal in the 1500 meter men's race. Meanwhile, Parul Chaudhary, who won a gold medal in the 5000 meter in the previous Asian Games, will be competing tomorrow. In the men's long jump final, Murli Sri Shankar and David Patturaj will be featuring. Badha Daud mein 400 meter mein purushon mein Tamil सरन, तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल आल्सो फीचर इन द विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द विमेंस टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तकराव डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुभाव लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 IG नगोया।

आप सुन रहे थे जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10:20 हुए। ये जब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आगाज करते हैं किशोर कुमार के गाय फिल्म शर्मिली के इस गीत के साथ। शब्द लेकर नीरज का है संगीत, एसडी बर्मन का।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में सुना। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा है गीत संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म जीने की राह का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा गीत है संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने लता मंगेशकर का गाया फिल्म जीने की राह का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना को कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म गीत से। इस गीत का आवाज़ मोहम्मद रफी ने।

आपने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म बदलते रिश्ते का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में किशोर कुमार का गाया फिल्म बिन फेरे हम तेरे का ये गीत। शब्द रचना इंदुवर की है, संगीत उषा खन्ना का।

किशोर कुमार की यह फिल्म बिन फेरे हम तेरे के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही खत्म होता है। एफएम दैनिक 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है कि भारत अपनी सुरक्षा में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत

0: विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नूना गैप्रिनडाशुली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंक 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज के प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।